FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु

0: अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समोसरों में देश वंदना के साथ।

समुसरों में देश वंदन के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। सुनते हैं सुधा मल्होत्रा के स्वर में ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। आराधना के समापन में आई श्रोताओं सुनते हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वर में मारुति नंदन की ये स्तुति।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है प्राकृतिक खेती के विभिन्न अस्त्र। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज आप 500 गुठिया बो। प्राकृतिक खेती में आनी बानी के जिन अस्त्र होते, अमृत होते, वो कैसे हमार खेती ला बढ़िया तगड़ा करे मा काम करते। प्राकृतिक खेती प्रकृति के संग काम करे के विज्ञान है। प्राकृतिक खेती देसी गाय और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधन में आधारित रसायन मुक्त खेती के एक तरीका है, जोन मा कोनो भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग नहीं हुए। ये स्वदेशी परंपरा ला बढ़ावा देते, किसान मन ला बाहरी जिनिस खरीदे के जरूरत नहीं पड़े। एमा मुख्य रूप से खेत में देसी गाय के गोबर गौमूत्र के उपयोग करे जाते। फसल विविधता आच्छादन मतलब मल्चिंग प्राकृतिक पदार्थ के माध्यम से कीट मन के प्रबंधन करे जाते। तो किसान भाई हो, आज आप मतलब प्राकृतिक खेती के विभिन्न अस्त्र और अमृत के बातला बतावो। सबले पहले नीमास्त्र के बात करी, रस चूसक कीट और

0: ली ए सब के प्रबंधन करे बर नियंत्रित करे बर यह उपयोगी होते। बनाए के विधि के बात करी, 5 किलो कूटे हुए नीम के पत्ती ला एक ड्रम में 100 लीटर पानी में डालना है। एमा 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गाय के गोबर डालना है। डंडा से 2-3 मिनट तक हला के कपड़ा से ढांक देना है। 48 घंटा के बाद पातर कपड़ा से छान लेना है। अब यह पौधा में स्प्रे बर तैयार हो गई। 100 लीटर प्रति एकड़ के दर से महीना में 1 से 2 बार पर्णीय छिड़काव के रूप में उपयोग करना है। दूसर अस्त्र के बात करी, ये होते ब्रह्मास्त्र। तना छेदक फल में होए वाले सुंडी और इल्ली और बड़े सुंडी इल्ली ला नियंत्रण करे बर एकर उपयोग करे जाते। बनाए के विधि के बात करी, 3 किलो नीम के पत्ती, 2 किलो करंज के पत्ती, 2 किलो सीताफल के पत्ती, 2 किलो धतूरा और 2 किलो बेल के पत्ती। ये पत्ती मन ला बारीक टुकड़ा में काट के 10 लीटर गौमूत्र में माटी के बर्तन में 20 से 25 मिनट तक उबालना है। 48 घंटा छाव में ठंडा होए के बाद इला कपड़ा से छान लेना है। 2 से 3 लीटर प्रति एकड़ के दर से महीना में 1 से 2 पैत पर्णीय छिड़काव के रूप में उपयोग करना है। ये तो है इस अस्त्र के बाद। अमृत के बात करी, 2 प्रकार के अमृत है, एक बीजामृत एक जीवामृत। बीजामृत से बीजोपचार करके बीज ला कीट और रोगाणु से बचाव करे जाते। बनाए के विधि के बात करी, 5 किलो देसी गाय के ताजा गोबर कपड़ा में बांध के 20 लीटर पानी में 12 घंटा पर लटका देना है। 1 बोतल में 1 लीटर पानी लेना है और 50 ग्राम चूना डाल के रात भर रख देना है। दूसर दिन गोबर के बंडल ला पानी में 3 से 4 फीट निचोड़ना है। एक घोल में खेत पार या जंगल के पेड़ के नीचे के 250 ग्राम 1 पौवा माटी ला डालना है। फिर से एक घोल में 5 लीटर देसी गौमूत्र और चूना के पानी ला मिलाना है। बीजामृत के 30 से 40 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से लेके बीज के उपचार करके छाव में सुखो देना है। ओखर बाद बीज ला खेत में बोना है। जीवामृत की बात करी, जीवामृत मृदा में सूक्ष्म जीव के संख्या गतिविधि और पोषक तत्व के उपलब्धता ला बढ़ाते। बनाए के विधि के बात करी, प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर पानी लेके 10 किलोग्राम गोबर और 10 लीटर गौमूत्र ला मिलाना है। एमा 2 किलो बेसन कोनो भी दार के होए, 2 किलो गुड़, 150 ग्राम मेढ़ या जंगल या पेड़ के नीचे के माटी। ओखर बाद ड्रम के मुंह ला ढक के रखना है और दिन में 2 पैत लकड़ी से ऊपर नीचे करके बढ़िया ढंग से मिलाना है। जीवामृत के उपयोग 9 से 12 दिन के बीच ही कर लेना चाहिए। जीवामृत के उपयोग 200 लीटर प्रति एकड़ के दर से सिंचाई जल के साथ महीना में 2 पैत करना है। ए होइस प्राकृतिक खेती में उपयोग होए वाले विभिन्न अस्त्र और विभिन्न अमृत के बाद। राम राम, जय जोहार।
1: प्राकृतिक खेती के विभिन्न अस्त्र, इस विषय पर यह थी जानकारी खेती की बात में। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित

मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगुली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: तुलसीकृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे रचना जोगलेकर और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। विषय है कुशल व्यवस्था। आलेख डॉक्टर सुरेश खरे का है।
1: प्राकृतिक सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं कहा जा सकता, किंतु व्यवहार की कसौटी पर कसा जाए तो लगेगा कि जितनी भी सुंदरता अपने चारों ओर फैली है उसमें से अधिकांश को मनुष्य की कुशल व्यवस्था ने ही सजाया संवारा है। व्यर्थ फेंकी गई वस्तुओं को भी यदि यथास्थान सुरुचिपूर्ण ढंग से रख दिया जाए तो वो बुरी नहीं लगती। चतुर माली अपने बाग में बाड़ के लिए लगाई गई झाड़ियों को भी इस तरह काटते छांटते हैं कि वे मनमोहक लगने लगती हैं। इसके विपरीत यदि तस्वीरें, फूल, गुलदस्ते आदि सुंदर वस्तुएं भी अस्त व्यस्त क्रम में रख दिए जाए तो वे गंदगी मात्र बनकर रह जाती हैं। काला कलूटा मनुष्य भी यदि अपने बाल, वस्त्र, रहन सहन को ठीक ढंग से रखता है तो वो सुंदर प्रतीत होता है, किंतु गोरा चिट्टा सुंदर बनावट वाला नाक, आंख आदि में मैल और मैले कुचेले कपड़े पहना हो तो वो काले कलूटे व्यक्ति की तुलना में कुरूप ही दिखाई देगा। प्रकृति ने किस वस्तु को कैसे सुंदर असुंदर बनाया है वो अपने हाथ की बात नहीं, किंतु इतना तो मनुष्य के हाथ में है कि वो अपनी कला कौशल में व्यवस्था बुद्धि का समावेश करके सभी को सुंदरता प्रदान कर सकता है। कुछ समय पूर्व जो जमीन खार गड्ढे वाली उबड़ खाबड़ और भद्दी दिखाई पड़ती थी, व्यवस्थित होने पर वही सुरम्य उद्यान बनकर जीवंत तस्वीर जैसी मनोरम मनोहर दिखाई देने लगती है। इस अद्भुत परिवर्तन का एकमात्र कारण मनुष्य की व्यवस्था बुद्धि है, जिसके साथ श्रम को जोड़कर प्रयुक्त किया जाए तो कहीं भी सुंदरता का सृजन

0: किया जा सकता है। जहां इस कौशल का अभाव होगा, वहां बहुमूल्य वस्तुएं भी कुरुचिपूर्ण गंदगी बनकर कचरे की भांति जहां तहां अशोभनीय स्थिति में पड़ी होगी। सच कहा जाए तो सौंदर्य और व्यवस्था एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। कला को सौंदर्योत्पादक कहा जाता है, पर यह कला सुरुचिपूर्ण व्यवस्था बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सामान्यतया चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, कविता, गायन, वाद्य, नृत्य आदि के माध्यम से किसी कलाकार की कला की अभिव्यक्ति होती है। ये तो कला का प्रतिफल हुआ, पर वस्तुतः है क्या? इस पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यही स्पष्ट होगा कि ये पदार्थों को और क्षमताओं की व्यवस्था पूर्वक क्रमबद्ध कर देने भर की कुशलता है, यही कला है। किसके पास प्रकृति प्रदत्त कितनी प्रतिभा है, ये प्रश्न गौण है। मूल बात यह है कि वो जितनी भी है, क्या उसका सदुपयोग करने पर ध्यान दिया गया है? प्रयत्न करने, सतर्कता पूर्वक उत्साह के साथ कार्य में रुचि लेने पर सामान्य स्तर का मनुष्य भी कार्य कुशल बन जाता है और उसे निरंतर विकसित करता रह सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां व्यक्ति की असावधानी की बुरी आदत निरंतर सतर्कता, सुव्यवस्था और सुरुचि में बदली तो सारा व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो गया। आरंभिक दिनों का बुद्धूपन न जाने कहां चला गया और उसके स्थान पर न जाने कौन उसे समझदारी का मुकुट पहना गया। ये और कोई नहीं, उसकी अपनी व्यवस्था बुद्धि का ही प्रतिफल था। व्यवस्था बुद्धि की सक्रियता किसी चमत्कारिक कायाकल्प से कम नहीं होती। उदीयमान व्यक्तित्व सदा उमंग से भरे रहते हैं, उनमें भरपूर उत्साह देखा जाता है। इस आंतरिक तेजस्विता के कारण उनके हाथ पैर काम करने के लिए मचलते रहते हैं। नीचेष्ट बैठे बैठे समय गंवाना उन्हें बहुत भारी पड़ता है। उनकी व्यवस्थित जीवन शैली न केवल उनके लिए लाभदायी होती है, वरन अन्यों के लिए भी उदाहरण स्थापित कर जाती है।
1: कुशल व्यवस्था, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आलेख डॉक्टर सुरेश खरे का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुनिए सुबह 8:30 पर और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में सुना जा सकेगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अमराई छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के इस अंक में आज हम आपको सुनवाएंगे किस्मत बाई देवार, बसंती देवार, ललिता शर्मा और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। समय होगा दिन में 10 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे हमले कराएंगे सुबह 7:30 पर और नए तराने सुनेंगे 10:30 से। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे शाम 5 बजे। प्रायोजक होंगे CF1 विभाग सरगुजा। सुगम संगीत में रात 8 बजे सुनिए गायक कलाकार हरिहरन के गाए कुछ गैर फिल्मी गीतों को। ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड ला जाना विषय पर।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय है संध्या 7:30 से रात्रि 8 बजे तक। इसमें उपयोगी भेंट वार्ता के अलावा सुनेंगे सामयिक चर्चा और मंडी मौसम की जानकारी, सामयिक सुझाव भी साझा करेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लिया सकेगा 5:05 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने हम लेकर आएंगे 6:20 और 7:00 से भी। चित्रपट संगीत पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी 8:15 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, तिथि जानकारी, आज के शेष कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेती शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षण सफलतया संपादितम्। तारेती भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़एम् गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: एक चमकीली सुबह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं महावीर बरगाह, कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं, बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं, विभिन्न जगहों में आ जा रहे हैं, मेहमान बनने या मेहमान नवाजी का दौर चल रहा है। इसमें बच्चे बेहद उत्साहित रहते हैं। वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा में मेहमानों का विशेष स्थान होता है, उन्हें विशेष सम्मान, विशेष खातिरदारी, उनके लिए तैयारियां, सब कुछ बड़े जतन से हम खुशी खुशी करते हैं।

और आज मित्रों दिन है खास मेहमानों का। पंखों में उम्मीद लिए दूर गगन से आते हैं, मौसम की मीठी दस्तक बन ये संदेश सुनाते हैं। धरती हो सुरक्षित, नदियां रहें आबाद, तभी लौटेंगे हर साल ये मेहमान खास। जी हाँ मित्रों, हर वर्ष हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आने वाले प्रवासी पक्षी हमें प्रकृति के संतुलन, आज़ादी और पर्यावरण का संरक्षण संदेश देते रहते हैं। पक्षियों की चहचहाट सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि हमारी धरती, जंगल, नदियां और आकाश सुरक्षित रहना कितना ज़रूरी है। नदियों की सरगम हो या हवाओं का प्यार, पक्षियों के संग ही खूबसूरत लगता है ये संसार। श्रोताओं, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तालाबों, पोखरों, दलदली स्थानों पर ये पक्षी अपना मूल स्थान छोड़कर हर वर्ष कुछ समय के लिए आते हैं, कई हजारों किलोमीटर दूर से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इन पंछियों का ये प्रवास जारी रहता है। ये हमें बताते हैं कि धरती, आकाश, जल, वायु, प्रकृति पर हम सबका समान अधिकार है। उनके प्राकृतिक आवास को ना बिगाड़ें और प्रवास के दौरान उनका शिकार ना हो, ये भी प्रयास हमारा होना ही चाहिए। हरियाली और शांति सभी को चाहिए, फिर चाहे वो पशु पक्षी हों या हम इंसान, और इसके लिए सार्थक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। सभी प्रकृति प्रेमियों को, पशु पक्षी प्रेमियों को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की हम ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

श्रोताओं, तिथि के अनुसार कवि गुरु गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आज जयंती है। उनकी छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ यादों के अंश श्री अक्षय नामदेव जी के लेख से हमें मिला है, जिनसे हम आपसे साझा कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता गुरुदेव कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जन्मदिवस पर गुरुदेव का स्मरण आया तो जेहन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी कई बातें अपने आप याद आने लगी हैं। भले ही हमें गुरुदेव के बांग्ला भाषा में लिखे बृहत साहित्य और काव्य का पूरा ज्ञान न हो, पर स्कूल में गाए सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान जनगणमन गुरुदेव ने ही लिखा है। भारत के हर विद्यालय में, हर शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय सहित सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में भी सावधान की मुद्रा में सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया जाता है। पाठ्यपुस्तक हिंदी की हर किताब के कवर पेज के पीछे में यह अनिवार्य रूप से रहता है। और मित्रों, कभी न कभी एकला चलो रे गीत हम सब ने गुनगुनाया भी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ पेंड्रा की माटी से जुड़े ज्यादातर लोग जानते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भावनात्मक संबंध इस क्षेत्र से जुड़ा है। उनकी यादें इस नर्मदा अंचल से जुड़ी हैं। वर्ष 1901-2 के आसपास गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का पेंड्रा के सेनेटोरियम आना जाना रहा। दरअसल उन दिनों सेनेटोरियम एशिया का जाना माना टीबी अस्पताल था। साल वनों से आच्छादित और कलकल बहती नदियों के कारण पेंड्रा अंचल की आबोहवा स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम थी, और यही उत्तम आबोहवा टीबी के रोगियों के लिए रामबाण का काम करती थी। उस दौर में श्रोताओं, टीबी बहुत कठिन और लाइलाज बीमारी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी श्रीमती मृणालिनी देवी टैगोर टीबी रोग से ग्रसित थी। गुरुदेव बीमार पत्नी का इलाज कराने सेनेटोरियम आए थे। यहां काफी समय इलाज के बाद भी स्वस्थ न होने पर 23 नवंबर सन 1902 को मृणालिनी देवी जी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ के जीवन की यह घटना कष्टकारी थी। उन्होंने यहीं उनका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की यादों के साथ वे खाली हाथ कोलकाता लौट गए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की यादों को जीवंत रखने के लिए सेनेटोरियम परिसर का नामकरण रविन्द्र परिसर के नाम से भी किया गया है। यह एक तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करने का बड़ा माध्यम भी बना। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ जी रेलगाड़ी द्वारा कलकत्ता से बिलासपुर के रेलवे स्टेशन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन आने की स्मृतियों को जीवित बनाए रखने के लिए रेल प्रशासन द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक शिलालेख पट्टिका भी लगाई गई है, जिसमें उनकी कविता फांकी से उद्धृत दो पंक्तियां भी अंकित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सेनेटोरियम से जुड़ी बातों

पर शोध करने के लिए वर्ष 2001-2 में छत्तीसगढ़ शासन की पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष एवं साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश जायसवाल जी के नेतृत्व में एक दल पेंड्रा गौरेला भी आया था। उस दल में रविन्द्र संगीत के विशेषज्ञ, बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि संगीतकार स्वर्गीय मनीष दत्त जी भी विशेष रूप से आए थे, जिन्होंने यहाँ सेनेटोरियम में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी बातों पर विस्तृत जानकारी इकट्ठा की थी। इस दल के साथ अनेक पत्रकार और बुद्धिजीवी भी थे। श्रोताओं, श्री अक्षय नामदेव जी के इस लेख के माध्यम से हम गुरु रविन्द्रनाथ जी का स्मरण करते हैं और करते हैं नमन। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम आज सुबह में श्रोताओं, अब आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
2: नमस्कार, यातायात पर आधारित प्रातःकालीन सूचनात्मक दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद आयोजन किया जा रहा है। इस परिपेक्ष में आज प्रातः 10 बजे से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला न्यायालय बिलासपुर तथा कोटा तखतपुर बिलहा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु इन न्यायालयों में अपने मामलों के निराकरण के आशय से बड़ी संख्या में उभय पक्ष के पक्षकार, माननीय अधिवक्तागण सहित अन्य लोग उपस्थित होंगे। हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई होगी एवं इनका निराकरण भी होगा। स्वाभाविक है, यहाँ पर इस बड़े आयोजन के कारण बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उतनी संख्या में विभिन्न प्रकार के वाहन भी माननीय न्यायालय के आसपास होंगे। अतः सभी से अनुरोध है, अपने वाहन माननीय न्यायालय के बाहर सड़क पर आसपास खड़े न करते हुए पार्किंग स्थल में ही रखें, ताकि किसी भी प्रकार से आवागमन प्रभावित ना हो। मित्रों, इस समय स्थानीय पुलिस मैदान में सालाना उर्स का आयोजन हो रहा है। आज इस संदर्भ में शहर के कोने कोने से संदल चादर रैली निकाले जाने की योजना है, जिनमें आज शाम 5 बजे तार बहार से संदल चादर रैली निकलकर अग्रसेन चौक, सत्यम चौक होते हुए पुलिस लाइन आएगी। वहीं एक दूसरी संदल चादर रैली शाम 7 बजे व्यापार विहार से चलकर भारती नगर चौक, तैबा चौक, मगरपाड़ा चौक, सत्यम चौक होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न होगी। इसी प्रकार एक अन्य संदल चादर रैली तालापारा से निकलकर सत्यम चौक, मध्य नगरी चौक, ईदगाह चौक होते हुए पुलिस लाइन पहुंचेगी। सभी रैली के सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि रैली से आम यातायात बाधित ना हो। पुलिस लाइन में आज भी कव्वाली का कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस लाइन में एवं बाहर सड़कों में यातायात का दबाव अधिक होगा। सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। और अब कार्यक्रम में बारी है कुछ गुनगुनाने की।

गीत के बाद मित्रों एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। हमारे युवा साथियों के लिए सूचना है, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मॉडल आईटीआई कोनी बिलासपुर के नवीन भवन में दिनांक 11 मई 2026 को सुबह 10:30 से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं जिला बिलासपुर से व्यवसाय विद्युतकार, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कोपा, वेल्डर के उत्तीर्ण प्रशिक्षण थी अपने समस्त

0: समस्त दस्तावेजों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रशिक्षणार्थी आईटीआई कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर अप्रेंटिसशिप विभाग में संपर्क कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की तिथि है श्रोताओं 11 मई 2026 दिन में 10:30 से। श्रोताओं आज की तारीख 9 मई 1866 के पन्ने को पलटें तो ये अंकित है भारत के प्रख्यात सेनानी समाजसेवी विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती का। चरित्र निर्माण को बल देने के उद्देश्य से ही उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पिता के असामयिक निधन के बाद गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ थे। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रही और राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाह करने का द्वारा उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहा और इसी कारण वे सच्ची लगन निष्ठा कर्तव्यपरायणता की विचारधारा से वशीभूत होकर कार्य करते रहे। हम उन्हें नमन करते हैं और कार्यक्रम में अब बारी है कुछ एक और संदेशों की।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: इन संदेशों और सूचनाओं के साथ श्रोताओं घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ इस अंक से दे अनुमति अपने साथी महावीर बरगाह को नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

कार्यक्रम में आए श्रोताओं अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनुराधा पौडवाल मनहर उदास के स्वर में समीर की रचना भी आपने सुनी। नदीम श्रवण का संगीत था और फिल्म थी सड़क। कार्यक्रम में आई श्रोताओं अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा यह गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म है सौदागर।

सौदागर इस फिल्म का गीत आप सुना मोहम्मद अजीज सुदेश भोसले और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही श्रोताओं सदाबहार नगमे का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है।

और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्थ द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की

0: जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान

0: भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल

0: में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी नए अध्याय की शुरुआत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ नमस्कार। माँ बनना एक बहुत सुखद और अद्भुत अनुभव होता है, पर यह सुरक्षित भी हो इसके लिए जरूरी है गर्भधारण से लेकर प्रसव तक हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत, जो श्री सत्य साई माँ एवं बाल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भधारण की आदर्श आयु क्या होती है?
1: आइडियल एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो 20 साल से 35 साल का होता है। अगर 20 साल से कम आयु है तो महिला उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, एंड 35 साल से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि 35 साल के बाद उसको गर्भ धारण करने में ही दिक्कत आती है। जैसे कि जो एक फीमेल में क्या रहता है कि हमारी AMH वैल्यू, हमारे जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके अगर 35 ईयर के बाद जो एज लिमिट होती है उसमें उसके अंडे की भी एजिंग होने लग जाती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना खुद में ही एक चुनावदायक चीज होती है, एंड देन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है 35 साल के बाद तो उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे BP का बढ़ जाना, एनीमिया, डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटिक जो हो जाती हैं फीमेल्स, और

0: प्लस जो इनका नेचुरली जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अदर एज लिम फैक्टर से अलग रहते हैं. तो जो आइडियल एज होती है वो 35 होती है, 35 के पहले होती है.
1: अच्छा.
0: तो इसमें क्या रहता है, अदर कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बच्चों में. अगर माँ 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली या कंजेनाइटली माल फॉर्म्ड डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं. तो बेस्ट है कि आप 35 के पहले ही प्लान कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं प्लान कर सकते, बट हाई रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर इट. जब माँ रेडी है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है.
1: जी. तो पहली बार जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं, उनकी देखभाल में किस तरह की चुनौतियां होती हैं?
0: जो पहली बार माँ बनती हैं वो महिलाएं अक्सर उनको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है. वो अपने मतलब उनको एक तो वो हर चीज़ घर परिवार में अलग सलाह मिलती है उनको, वो उनके बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं.
1: जी
0: तो उनको शारीरिक जो बदलाव आते हैं जैसे थकान लगना, शाम के समय बुखार जैसा लगना, उल्टी घबराहट लगना, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाती कि इसको कैसे डील करें. तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको ये डर को हटाना है, ये असहजता को हटाना है कि ये सब चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये नॉर्मल चेंजेस है जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से है. प्रेगनेंसी जब हमको कंसीव होती है तो एक प्रोजेस्ट्रॉन करके एक हार्मोन होता है जो बहुत पीक लेवल मतलब जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा उल्टी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा घबराहट जैसा लगना.
1: जी
0: तो इसके लिए इनको डरने की बात नहीं है, इसमें बॉडी में खाने में या फिर अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें चेंजेस करने होते हैं. जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इनको फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लेना, इनको कम से कम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करके खाना है. अगर ये बहुत देर खाली पेट रहती है तो दिक्कत की बात है, और अगर ये पेट भर के खाती है तो इनको उल्टी और वॉमिटिंग हो गई. अगर खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी की वजह से वो और नौजिया और वॉमिटिंग्स होते हैं. अगर पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो फिर पचता नहीं है, वो फिर उल्टियाँ हो जाती है. तो एक फ्रिक्वेंट एक मील डिसाइड रखना है कि मुझे हर 2 2 घंटे में, हर 3 3 घंटे में लाइट खाना खाना है, और जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश बना होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी कम खाना है, और जो पसंद है वो सब खा सकते हैं. ऐसा नहीं है मुझे ये नहीं खा सकती मैं वो नहीं खा सकती. जो आपको अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, लेकिन आप कोशिश करिए आप उसको लें. लेकिन आपको दूध पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही तो थोड़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर मत लीजिए. दूसरी बात यह है कि शाम के समय जो थकान लग रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली अडेप्ट हो जाएंगी. इनिशियली क्या रहता है कि शुरुआत के 2 3 4 महीनों में ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो इसमें क्या है कि और महिलाओं का सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है. तो शुरुआत के समय में वजन नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी वो खाने में परहेज कर रही हैं, ऑलरेडी उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उस समय वजन बल्कि थोड़ा कम रहता है, या बढ़ा तो 1 से 2 किलो बढ़ेगा. लेकिन बच्चे की वजह से वो वजन उनको अभी नहीं बढ़ाना या बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको बस एक साधारण घर का खाना खाना है जिसमें वो थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले, या जो नॉर्मल घर का खाना है सिर्फ वो भी सेवन कर सकती हैं. उसमें कोई फल और जो जो चीज उनको पसंद है, जो चीज उनको खाने में भा रही है या फिर वो खा सकती है, उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सब चीजें वो ले सकती हैं. बस इसमें ये रखना है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, अभी नीचे झुकना, वजन उठाना, ये सब चीजें अवॉइड करनी रहती हैं.
1: कोई ऐसी चीज भी होती है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान?
0: देखिए यूजुअली जो पपाया होता है, पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो हम लोग डेंटली वो अपना प्रेगनेंसी आगे डील करती है. तो एएनसी विजिट यूजुअली तो 8 होना चाहिए, मतलब WHO के अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 4 विजिट तो उसको करना चाहिए. जो पहला 3 महीना होता है जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव की और 12 हफ्ते तक का, तो ये जो समय रहता है इसमें हम फर्स्ट मदर को हम बुलाते हैं. उसमें हम उनकी सबसे पहले बेसिक ANC प्रोफाइल मतलब जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका HB कितना है, उसके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, उसके यूरिन कैसा यूरिन टेस्ट हुआ जाता है, इसमें प्रोटीन्स या यूरिन में इन्फेक्शंस तो नहीं है, देन ये सारी सिकलिंग वगैरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी बहुत प्रोन है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं. ठीक है, इससे ये रहता है कि एक बेसलाइन हम शुगर भी चेक करते हैं मदर का उसी में, क्योंकि जब अगर बेसलाइन

0: शुगर नॉर्मल है उसका, और अगर 20 हफ्ते बाद शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक नहीं है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज के साइड जा रही है।
1: ओके
0: मतलब वो गर्भ के बाद जो डायबिटीज होता है उसके साइड जा रही है। तो बेसलाइन हमारे पास एक सारे जांच होने चाहिए जो हम एएनसी प्रोफाइल जो फर्स्ट विजिट में हम कराते हैं। दूसरी चीजें हम लोग ये कराते हैं जो फर्स्ट 3 महीने का रहता है उसमें एक एनटी एनबी स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है। वो एनटी एनबी स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है। उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है। डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये इनिशियली पहला मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम तीसरे महीने में करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ। उसमें हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं। अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में

0: एनटीएनबी स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है। वो एनटीएनबी स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है। उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है। डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये इनिशियली पहला मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम तीसरे महीने में करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ। उस पे हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं। अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में सिखाते हैं। हम उसको सिखाते कि बॉडी तुम्हारी नेचुरली कैसे अब तुमको आगे डील करना है। तो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेकेंड विजिट जो रहती है वो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है, तो उसमें हम एक एनोमली स्कैन करते हैं जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। वो एनोमली स्कैन में हम बेबी को हेड टू टो स्क्रीनिंग किया जाता है कि बच्चे में सब चीजें ठीक है। कभी लाइक उसके लेंसेस कैसे हैं, उसके आईज से लेके उसके हाथ, उसके टो, उसके फिंगर्स, एवरीथिंग उसमें स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इसमें क्या रहता है, जिन्होंने 3 महीने की सोनोग्राफी नहीं करवाई है वो अब इसमें क्वाड्रपल मार्कर में करवा सकते हैं 18 से 20 हफ्तों के बीच में। तो क्वाड्रपल मार्कर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन जिनका ऑलरेडी डबल मार्कर हो गया है वो जरूरी नहीं कि क्वाड्रपल मार्कर भी करवाएं। और अगर 5th मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 20 वीक्स तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेबी को आगे कैसे हमको प्लांट आउट करना है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हमको लगता है कि क्वाड्रपल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो हम उसके आगे का टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनआईपीटी या एम्नियोसेंटेसिस। एनआईपीटी मदर का ब्लड लेकर टेस्ट होता है जिसमें मां का ब्लड निकालकर उसको जेनेटिकली और क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग किया जाता है। एंड एमनियो अगर हमको 100% कन्फर्मेटरी चाहिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं है तो हम लोग फिर एम्नियोसेंटेसिस करते हैं। उसमें मां के आसपास का जो पानी होता है उसको सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है, सोनोग्राफी गाइडेड रहता है ये। तो उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को जेनेटिकली इश्यूज नहीं है या क्रोमोसोमली बच्चा फिट है, अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते। तो सब एक एक स्टेप्स का, एक एक विजिट का उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर बेबी का ग्रोथ आता है कि बेबी ग्रो कैसे कर रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको 600 ग्राम प्लस ऐसा रहना चाहिए, कितना उसकी लैग हो रही है। फिर 32 वीक्स अगर हो रहे हैं तो उसमें 2 kg के अराउंड आ रहा है, 1.7 to 2 kg। तो इनिशियली फिर हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं जी। एंड इसी बीच में हम टेटनस या वैक्सीनेशन का भी इंक्लूड करते हैं जो विजिट्स आते हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप बोलोगे तो बेसिकली 2 वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टीटी का जो वैक्सीनेशन लगता है टेटनस का, वो 3 महीने में लग जाना चाहिए।
1: पहला टीका
0: 3 महीने में,
1: ठीक है।
0: और दूसरा टीका जो रहता है वो 1 महीने बाद लगता है जो फर्स्ट टीका लग गया है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहला टीटी का टीका ले लीजिए और जैसे 28 वीक्स हो गया, 7वां महीना लग जाए, तो टीडैप करके एक वैक्सीनेशन होता है वो मोर सब एफिशिएंट रहता है। उसमें टेटनस भी कवर होता है, डिप्थेरिया भी कवर होता है और पर्ट्यूसिस भी कवर होता है बेबी का, ठीक है। तो उसमें माँ और बेबी दोनों का टेटनस का माँ का कवर हो गया, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया बच्चे का भी कवर हो जाता है। तो जिसके लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है तो हम टेटनस का 2 डोज इजिली लगा सकते हैं।
1: तो कम से कम 2 टीके बहुत
0: जरूरी है जी, क्योंकि क्या अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाएंगे तो क्लॉस्ट्रेडियम टेटेनी करके एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उससे वो क्या रहेगा, कल को अगर डिलीवरी हो रही है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसमें मदर के लिए वो जानलेवा भी आगे बन सकता है। तो टेटनस मस्ट है लगाना
1: जी। जी ये बताइए कि संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कितना जरूरी है?
0: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या रहता है, एक्चुअली मैं आपको एक अपने पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी मम्मी जो सिंगल चाइल्ड थी एंड मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी की जो मदर, शी डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमोरेज। उन्होंने घर पे डिलीवरी हुआ एंड दैट लॉन्ग बैक एंड उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो घर पे डिलीवरी कराना बहुत बहुत खतरे वाली चीजें हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हर सुविधा है मां और बच्चे को बचाने के लिए। पहली बात तो ماں کو شروعات سے ہی انسٹیٹیوشنل میں آ کے اپنی ساری جانچیں

0: बीपी, शुगर सारे चेक कराते रहना चाहिए, जिसमें वो स्मूथली 9 महीने तक अच्छे से स्वस्थली खींच सके, फिर वो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। और इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराने से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर बच्चा फंस रहा है या माँ को प्रसव होने के बाद बहुत ब्लीडिंग है, तो हम उन सबको ट्रीट कर सकते हैं, हम माँ की जान को बचा सकते हैं तुरंत। तो मैम मेरे हिसाब से हर एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बातें और भी हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप आज हमारे श्रोताओं को?
0: मैम मुझे डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी गाना बहुत पसंद है, वो इतना एनर्जेटिक है एंड वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो मुझे वो
1: यही
0: सॉन्ग
1: गीत
0: तो
1: है।
0: पसंद है
1: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत
0: जी।
1: सुनते हैं।

डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंवलजीत को। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपनी

0: साथ एक नींबू का पानी ले लीजिए या पहले से एक विटामिन सी के एक च्यूएबल टैबलेट ले लीजिए ताकि आयरन का रेट का एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ जाए। अगर आप दूध के साथ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आयरन की टैबलेट्स लेनी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की टैबलेट दिन में मत लीजिए, थोड़ा शाम के समय या रात के समय सोते समय लीजिए ताकि आपको जो हल्का फुल्का क्रैम्प्स आए वो आप डील कर सकें, क्योंकि थ्रू आउट आप दिन भर आपको अनइजीनेस लगेगा तो फिर आप आयरन टैबलेट वैसे ही लेना बंद करेंगी। तो आप एक पर्टिकुलर एक सुटेबल अपना टाइम ले लीजिए कि मुझे इतने समय आयरन की टैबलेट लेनी है, रात को सोते समय मैं लूंगी एक नींबू के पानी से या फिर एक ऑरेंज जूस के साथ या फिर विटामिन सी के साथ, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर कंवलजीत, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। धन्यवाद।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी प्रीति यादव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान सभी परिवारों से 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। श्रोताओं, इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 1,38,000 परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। श्रोताओं, जनगणना के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएंगी। इन्हें किसी से भी साझा नहीं किया जाएगा, यहां तक कि टैक्स, पुलिस या किसी तरह की जांच में इस जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इसका उपयोग किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल उपकरणों और माध्यमों से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है, बल्कि इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी सुदृढ़ हो रही है। श्रोताओं, जनगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। गोयल साहब, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: सर, ये जो जनगणना की प्रक्रिया है, जनगणना 2027 की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो जनगणना 2027 हो रही है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? भारत में जो इससे पहले जो जनगणना हुई है उससे यह किस तरह से अलग है?
2: भारत की जनगणना वर्ष 2027 नाम से जो हो रही है, ये दो चरणों में होगी। पहला चरण वर्ष 2026 के मई महीने में और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होकर मार्च के 5वीं तारीख 2027 तक पूर्ण हो जाएगा हमारे भारत में जनगणना। यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति उनके नियम कानून जो बने

0: उनकी तरह ही की जा रही है, परंतु इसमें कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो ये कि यह जनगणना प्रथम बार इस देश के इतिहास में पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होने वाली है। इसका मतलब जो हम कागज में लंबे लंबे फॉर्म लोगों के पास ले जाकर भरते थे, फिर उन फॉर्म को एक जगह वापस लाते थे, फिर उनके आधार पर डेटा कंप्यूटर में एंट्री करते थे और फिर इन फॉर्म्स को एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता था, वो अब आवश्यक नहीं होगा। पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही आपके सामने एकत्रित की जा सकेगी और इसकी वजह से जो हमारे डेटा एनालिसिस है वो बड़ी तीव्र और तेज हो जाएगी। दूसरी विशेष सुविधा इस बार जो इस जनगणना में है वो यह है कि भारत के नागरिक को स्वयं अपने स्वगणना करने का विकल्प मिल रहा है। यह डिजिटल माध्यम और तकनीक की वजह से संभव हुआ है। तीसरी विशेषता वो यह है इस जनगणना की कि पहली बार भारत में कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है वो इस जनगणना का भाग है, हालांकि वो इस जनगणना के दूसरे चरण में आएगा, न कि जनगणना के प्रथम चरण में। इस प्रकार इस बार की जनगणना तीन रूप में इसकी विशेषताएं हैं और अन्य रूपों में हर जनगणना की तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण जनगणना है। 16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। सामान्य तौर पर हर 10 साल में होनी थी लेकिन कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाई। जनगणना हमारे देश का मूलभूत आंकड़ा होता है और हमारे अगले 10 साल जो भी बुनियादी सुविधाएं या हमें प्लानिंग करनी है उसका मूलभूत आधार इन्हीं जनगणनाओं का आंकड़ा होता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: सर, स्वगणना के बाद 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जो लोग स्वगणना के तहत पोर्टल में अपनी जानकारी दर्ज कर चुके हैं उनके घर जब प्रगणक आएंगे तो उन्हें क्या करना होगा?
0: 1 मई से 30 मई के बीच जब प्रगणक आपके घर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि सर या मैडम आपने स्वगणना करी है या नहीं करी है। अगर आप कहते मैंने नहीं करी तो फिर वो कोई बात नहीं, वो आपका गणना आपके सामने कर देगा। और यदि आप कहते हैं कि आपने स्वगणना करी है तो वो आपसे SEID मांगेगा। ध्यान रखिए, वो आपसे OTP नहीं मांग रहा, वो आपसे आपका SEID मांग रहा है जो 11 डिजिट का है, जो कि आपको SMS से मिला है। हमारा प्रगणक, वैसे बता दूं, जो भी आता है वह एक फोटोयुक्त ID कार्ड जो कि जनगणना से जारी किया जाएगा लेकर आएगा। जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है उसको और आपको SEID पूछता है, आप उसे SEID दीजिए, वो अपने ही मोबाइल पर आपके सामने आपका SEID एंटर करेगा और यदि SEID आपका सही है तो वह आपके द्वारा भरी गई जानकारी उसके मोबाइल पे प्रदर्शित होगी। वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा। अगर आपको कोई संशोधन करना है, यदि त्रुटिपूर्ण कोई पूर्व में एंट्री हो गई है, कोई संशोधन करना है तो आप फिर कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं मैंने जानकारी सही भर दी है, मैं संतुष्ट हूं, तो वह आपके सामने स्वीकार का बटन दबाएगा। स्वगणना का विकल्प देने का उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को अपनी जनगणना में भाग लेने का एक अवसर भी मिलेगा, हमारे प्रगणक के लिए डेटा एंट्री करना कम रहेगा और आप स्वयं अपना नाम भरेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर इत्यादि कम रहेंगे।
1: श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय गोयल साहब से, जो IAS हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में जनगणना निदेशक हैं। गोयल साहब, जनगणना निदेशालय द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो लोगों के घर घर जाएंगे तो किस तरह की जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी?
0: जनगणना के जो लोग आपके घर आएंगे उन्हें प्रगणक कहते हैं। प्रगणक सामान्यतः आपके क्षेत्र के ही टीचर्स होंगे, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे। शहरी क्षेत्रों में वो टीचर के अलावा कुछ सब इंजीनियर या हमारे नगरीय निकायों के कर्मचारी भी हो सकते हैं। वो जब आएंगे तो वो आपसे केवल 33 सवाल पूछेंगे। ये 33 सवाल अलग अलग तरह के हैं। एक तो पहला आपके परिवार से संबंधित है, आपका मकान से कुछ संबंधित सवाल पूछेंगे कि यानी आपका मकान की छत पक्की है या नहीं, आपके घर में जो फर्श है वो पत्थर की है या मिट्टी की है या टाइल्स की है इत्यादि। इस प्रकार की सामान्य जानकारियां जिससे कि हमें हमारे देश के मकानों में किस तरह के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी आपके पास पीने का पानी है कि नहीं, शौचालय का विकल्प है या नहीं, इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रयास सांख्यिकीय रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में एक क्षेत्र में कितने लोगों के पास पीने का जल का स्रोत नहीं है या कितने लोगों के पास अभी भी टॉयलेट नहीं। सांख्यिकीय आंकड़ों का एकत्रण किया जा रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों का। व्यक्ति विशेष ना आपके कोई स्वत्व कटेंगे ना आपके कोई स्वत्व जुड़ेंगे।
1: एक बात और, जब भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब क्या है कि धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं देश में, तो व्यक्ति के अंदर एक डर होता है कि जो प्रगणक आया है वो कितना वैध है, कि क्या वो वाकई सरकारी कर्मचारी है या कोई फर्जी व्यक्ति उसके द्वार पर आ गया है, और क्या उस समय, इस प्रक्रिया के समय, जो परिवार के लोग हैं उनको कोई दस्तावेज दिखाना है या इसका कोई शुल्क देना है, इसके बारे में बताएं।
0: आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो जनगणना आपके लिए मेरे लिए पूर्णतः निःशुल्क है। नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि निःशुल्क जनगणना हमारी हो, तो जनगणना में किसी प्रकार के शुल्क, फीस, पैसे इत्यादि, फाइन, कुछ भी नाम कह लो, कोई पैसे आपको कभी नहीं देने, आज ही नहीं कभी नहीं देना।

0: दूसरी चीज, आपको अपने जनगणना में दी जाने वाली जानकारी के प्रमाणीकरण में एक भी दस्तावेज नहीं दिखाना है। ये दो चीजें मैं चाहूंगा आपके सारे श्रोता ये मन में बिठा लें कि जनगणना निःशुल्क है और दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहां जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो हमारे द्वारा एक फोटोयुक्त आईडी कार्ड लेकर आएगा, इसमें QR कोड भी होगा। तो जो श्रोताओं को लगता है कि उन्हें और सावधानी बरतनी है, जो वो आपको अपना परिचय पत्र दिखाएगा, पहचान पत्र दिखाएगा, उसमें जो QR कोड है उसे स्कैन कर लीजिए और वो स्कैन QR कोड आपको दिखा देगा कि उस आदमी का नाम इत्यादि क्या है। अगर कोई फर्जी आदमी आता है तो ना तो वो QR कोड दिखा पाएगा, या QR कोड दिखाता है तो उसका QR कोड आपके द्वारा स्कैन किए जाने पर कोई भी हमारे डेटाबेस से डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
1: एक सवाल और है गोयल साहब कि जब भी कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संशय भी होता है कि इसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी की निष्ठा का तो उसका हनन नहीं होगा या उसकी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं होगा, तो इसमें गोपनीयता किस तरह से बरकरार रखी जाएगी?
0: जनगणना में दी जाने वाली जानकारी की गोपनीयता दो आधार पर टिकी है। सबसे पहले विधिक आधार। जनगणना अधिनियम की धारा 15 कहता है कि आपके या मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जनगणना में पूर्णतः गोपनीय है और यह जानकारी किसी भी पुलिस, इनकम टैक्स, किसी भी RTI, कोर्ट, चाहे कोई न्यायालय हो, किसी में साझा कभी नहीं की जा सकती। यह धारा 15 हमारे सेंसस अधिनियम के तहत पूर्णतः सुरक्षित है। अभी नहीं, आजादी के समय से यह धारा उसमें है। तो सबसे पहले है विधिक गारंटी कि आपकी जानकारी कभी साझा की नहीं जा सकती। दूसरी बात तकनीकी, क्योंकि हम इंटरनेट पे ये सब काम कर रहे हैं, मोबाइल पे पहली बार डिजिटल कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सभी को कि भारत में अब आधार का डेटाबेस हो गया, UPI हो गया, इन सब के चलते हमारे देश में सरकारी तंत्र को डिजिटल डेटाबेसेस को चलाना और उनकी सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का अनुभव हो गया है। उसी के तर्ज पर जनगणना में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को भी हमने काफी सुरक्षित बनाया है। सर्वप्रथम जो मोबाइल पे हमारा प्रगनक डेटा ले रहा है वहां पर सुरक्षा का एक लेयर है। सेकंड, जो डेटा उसके मोबाइल से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सर्वर में, उसमें हमने इंक्रिप्शन डाल रखा है और अन्य सुरक्षा की उसमें फीचर्स हैं। तीसरी चीज, जो हमारे सर्वर स्वयं है, वो सर्वर भारत की सर्वोत्तम तकनीकी संस्थाएं यथा CERT हो गया, CDAC हो गया, इनके सारे तकनीकी मापदंडों को पार करके बहुत बड़े ही सुरक्षित तरह से रखा जा रहा है। तो आपकी हमारी जानकारी नॉट ओनली सुरक्षित है बल्कि सुरक्षित रहेगी, इसके बारे में विधिक रूप से और तकनीकी रूप दोनों से प्रावधान किए गए।
1: गोयल साहब, जो भारत देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और जो जनगणना का काम होगा निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक और विराट कार्य है, तो इस कार्य को अंजाम देने के लिए सही तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो प्रगणक हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है?
0: जैसा आपने सही कहा, इतने व्यापक चीज को बिना अच्छी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता। हमारी प्रशिक्षण अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से चालू है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 62,000 से भी ऊपर प्रगणक और पर्यवेक्षक चुने गए हैं और इनके डाउट क्लियरेंस के लिए भी 3 लेयर पे डाउट क्लैरिफिकेशन के टीम्स बनाए गए हैं। जब हमारे प्रगणक फील्ड में जाएंगे अवश्य रूप से कोई स्वाभाविक तकनीकी विषय उठेंगे, किसी प्रकार के संदेह संशय उठेंगे, उसके लिए 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर क्विक रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर, सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 1855 1855, ये हमारा नेशनल टोल फ्री नंबर है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जनगणना से जो जुड़ा हुआ जानकारी चाहता है, आप इस पे फोन करके हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। 30 मई तक हम अपनी पूरी छत्तीसगढ़ की आबादी की जनगणना का पहला चरण पूर्ण कर लेंगे।
1: एक अंतिम बात कि कोई भी अभियान होता है, मिशन होता है, उसमें जो सरकार है वो तो अपना पूरा जोर लगाती है, उसकी पूरी तैयारी होती है। जैसा आपने बताया कि एक शानदार सा प्रशिक्षण दिया गया है सभी प्रगणकों को, जो भी इससे संबद्ध लोग हैं उन्हें, लेकिन किसी भी अभियान की जो सफलता है वो तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जनता की भी वैसी ही सहभागिता हो, उसका भी सहयोग मिले। तो इस समय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो इस जनगणना के कार्य में किस तरह से अपना सहयोग करें?
0: भारत के नागरिक होने के नाते मेरा अन्य भारतीय नागरिकों से, जो आपके श्रोतागण हैं, उनसे अपील है कि जनगणना हमारे देश की अगले 10 साल की आधारभूत संरचनाएं और नीतिगत निर्णयों का बेसिस या आधार बनती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जनगणना में अवश्य अपनी सही जानकारी दें, किसी भी भ्रम में ना आए। तो जब जनगणना का प्रगणक आपके घर द्वार आए तो उसको आमंत्रित करिए, उसे जानकारी अपने सर्वोच्च जानकारी के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से जो जानकारी

0: आपके पास है, कृपया उससे साझा करें और हमारे देश हमारे क्षेत्र की उन्नति प्रगति का भाग बने। जनगणना को एक सेल्फी के रूप में समझिए, जनगणना अपने देश की एक सेल्फी है। इस सेल्फी में आपकी फोटो आ जाए, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जनगणना में भाग लेना सुनिश्चित करें।
1: बहुत सुंदर बात, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। निश्चित रूप से जो जनता है वो भी सहभागी बनेगी और इस कार्य को सफल बनाया जाएगा। आपको इस कार्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपने हमें विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, उसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक IAS श्री कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता के मुख्य अंश। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
3: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: पुराना।
1: एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात

के संगीतकार हुआ करते थे कमलदास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। अब हम रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये योजना जरूरतमंद परिवारों की बड़ी चिंता दूर कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक नवदंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही रेडक्रॉस की असली पहचान है। इस अवसर पर जूनियर और यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन भी आयोजित हुआ। लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बालोद जिले के डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडीलोहारा की ओर जा रहे थे।

0: तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम अमराई का। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किस्मतबाई देवार, बसंती देवार, ललिता शर्मा और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं किस्मतबाई देवार, बसंती देवार और साथियों के स्वर में ये गीत।

मानते

किस्मत भाई देवार, बसंती देवार और साथियों को अभी आपने सुना। कार्यक्रम अमराई में अब अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई में आइए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं ललिता शर्मा और साथियों के सर में कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को।

0: ललिता शर्मा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए किस्मत बाई देवार, बसंती देवार, ललिता शर्मा और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का। कार्यक्रम में गीत सुनने से पहले बारी है कुछ संदेशों की।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम में आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म अकीरा से लिया गया एक गीत। नाहिद अफरीन और साथियों की आवाजें हैं, कुमार की रचना है और विशाल शेखर का संगीत।

0: चाहिए वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में आई श्रोताओं, आप सुनते हैं अखिल सचदेव और साथियों के स्वर में मनशील गुजराल का लिखा ये गीत। संगीत अखिल सचदेव का है और फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

0: केला।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बांके की क्रेजी बारात। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत अभिषेक नलवाला और साथियों के स्वर में। रवि बंसेट का लिखा गीत है और विजय शंकर का संगीत।

0: बांके की क्रेजी बारात, इस फिल्म का गीत आपने सुना। और इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यही विराम। और अब कार्यक्रम में आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: नमस्कार। यातायात पर आधारित प्रातःकालीन सूचनात्मक दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद आयोजन किया जा रहा है। इस परिपेक्ष में आज प्रातः 10 बजे से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला न्यायालय बिलासपुर तथा कोटा तखतपुर बिल्हा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु इन न्यायालयों में अपने मामलों के निराकरण के आशय से बड़ी संख्या में उभय पक्ष के पक्षकार, माननीय अधिवक्तागण सहित अन्य लोग उपस्थित होंगे। हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई होगी एवं इनका निराकरण भी होगा। स्वाभाविक है यहाँ पर इस बड़े आयोजन के कारण बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उतनी ही संख्या में विभिन्न प्रकार के वाहन भी माननीय न्यायालय के आसपास होंगे। अतः सभी से अनुरोध है अपने वाहन माननीय न्यायालय के बाहर सड़क पर आसपास खड़े न करते हुए पार्किंग स्थल में ही रखें ताकि किसी भी प्रकार से आवागमन प्रभावित न हो। मित्रों, इस समय स्थानीय पुलिस मैदान में सालाना उर्स का आयोजन हो रहा है। आज इस संदर्भ में शहर के कोने कोने से संदल चादर रैली निकाले जाने की योजना है, जिनमें आज शाम 5 बजे तार बाहर से संदल चादर रैली निकलकर अग्रसेन चौक, सत्यम चौक होते हुए पुलिस लाइन आएगी। वहीं एक दूसरी संदल चादर रैली शाम 7 बजे व्यापार विहार से चलकर भारतीय नगर चौक, तैबा चौक, मगरपाड़ा चौक, सत्यम चौक होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न होगी। इसी प्रकार एक अन्य संदल चादर रैली तालापारा से निकलकर सत्यम चौक, मध्यनगरी चौक, ईदगाह चौक होते हुए पुलिस लाइन पहुंचेगी। सभी रैली के सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि रैली से आम यातायात बाधित ना हो। पुलिस लाइन में आज भी कव्वाली का कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस लाइन में एवं बाहर सड़कों में यातायात का दबाव अधिक होगा। सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर का पुनः प्रसारण।

एफएम बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरिठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपिंद्र की, और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

पेशे खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाय फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूनी ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुली।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं। और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है, वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाजी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी, मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून

0: को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के संदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तोके क्षेत्र के जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर रखी गई थी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।
2: आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
3: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया।

0: आज 25 वैशाख गुरुदेन्द्र रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की। ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर, बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ हैं ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त, वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की, कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स

ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनामी नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: इस गाने में कौन सा शब्द आया है? याद कीजिए, गली।
1: बड़ा मजबूत

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है, कैसे होगा बताइए। गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम, ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक, हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं

कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ। बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं, याद आ गए हैं, जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है, इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापट हमें बताने हैं। फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संघ हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले।

तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तगे से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि वे इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए सुरीले आवाज के लिए मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी।

फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की
0: याद कीजिए फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबू लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीर बाई कर्नाटकी दे रही हैं।

एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत

श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबू लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा, कड़वा कसैला, सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि छुन छुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है चिड़िया शब्द? हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त

चुनें, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों। लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15

0: साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा

0: खड़ा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। विविध भारती
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं।

0: केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहां है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये है विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मौनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले, और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे

0: था।
1: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
0: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
1: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
1: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
1: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
1: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
1: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है?

0: कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांटकर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो, कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं? ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: श्रृंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे।

0: ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये शिंगारम।

0: आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3,000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा न कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे अरे, जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है।
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम?

0: ये देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
1: और कोई क्या करेगा।
0: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
1: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
0: अच्छा?
1: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
0: अच्छा, ये बात है।
1: छोड़ दे,
2: छोड़ दे। बन गया तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
0: अरे वाह, अरे इस दागी ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
2: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो हाल फेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
0: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
1: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
1: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो। मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या

0: कोई अर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंदस्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: है ये खांसी? आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
2: जी,
3: हालांकि

0: 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा तो मुझे
1: जी जी
0: बहुत अच्छा लगता है, और
1: हाँ
0: उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक तो मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी,
0: जी
1: तो हम तब से बात शुरू करें कि
0: जी
1: वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला है।
0: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे,
1: जी
0: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ
0: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
1: जी
0: ये मेरा
1: जी
0: नेचर नहीं था।
1: हाँ
0: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली।
1: हाँ हाँ
0: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी जी
0: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
1: जी
0: राजा राम शिंदे जी थे, तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या। तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
1: हाँ
0: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए, बहुत
1: हाँ
0: यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
1: जी
0: क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी याद है।
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी
0: जो दिन गुड़ी पड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा
1: बिल्कुल
0: के दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे से
1: हाँ
0: दिन, उनमें पड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: थी।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कुणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कुणा से। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ जरूर
1: ओ
0: गाओगी।
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया
1: वाह
0: उससे,
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो वो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
0: हाँ जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग
0: गाना
1: अलग
0: है।
1: गायिकाओं ने अलग अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश करती थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी जी
0: उसकी झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव में
1: हमारा रहना भी वहाँ
0: खास
1: था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: आती
0: सब काम
1: थी, सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके, लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को, जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह।
1: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हम

0: हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा।
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
1: ओ
0: जी, मेरी
1: अच्छा,
0: आवाज जरा भारी थी, जारी थी,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक थी और
1: अच्छा
0: हाइट भी अच्छी थी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो
1: हाँ,
0: स्कूल
1: चूंकि ये महिला
0: के
1: विश्वविद्यालय है
0: महिला विश्व
1: तो
0: नहीं,
1: सारे,
0: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात,
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे
1: हाँ
0: साथ,
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या ले, ऐसा हुआ था
1: क्या बात
0: बहुत
1: है।
0: मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सके।
0: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती
1: मंच पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं। और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका यहाँ
2: भूमिका
1: इस नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनजीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी,
1: दौड़ेगी,
2: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और दो बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की।

0: सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने
1: पहले
0: वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए?
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए,
0: हाँ
1: फिर उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का

0: दौरा किया हमने, टूर किया
1: अच्छा
0: ईस्ट अफ्रीके का।
1: हाँ,
0: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
1: हाँ,
0: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
1: हाँ,
0: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
1: जी जी
0: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज
1: जी
0: और आशा भाई की रेंज,
1: हाँ
0: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
1: अच्छा
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
1: अच्छा
0: दम मारो दम।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
1: जी जी
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे
1: अच्छा
0: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
1: हाँ
0: किया
1: हाँ
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर सब घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे।
1: मगर
0: रफी साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं गाया
1: नहीं गाए। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन
0: जरूर
1: सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों
0: टीका
1: के
0: टिप्पणी की, आप जो आपका
1: टीका
0: कहना।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों का टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें किसने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां
0: जी,
1: हैं, तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना में गाओ ना साथ में,
0: अच्छा
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो, वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे
0: क्या
1: सिर्फ
0: बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके
0: जी
1: उसके साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो इसमें
1: है।
0: आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ
1: याग्निक
0: हाँ
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगाकर है शायद इस फिल्म का
1: दम
0: गाना
1: लगा के
0: है।
1: है
0: जी
1: उसका,
0: जी ये
1: पता
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह
0: है,
1: से
0: ये
1: गाते थे
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या?
0: क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: हैं,
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता
1: नकल, नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी जी जी
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हूं
0: अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल,
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते थे
0: बहुत सारे हो
1: गली
0: जाते हैं,
1: चौड़े में
0: क्या बात है। तालीम बहुत जरूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत। पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, ये जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट। और
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गाके फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है, कुछ
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज, वो
0: हाँ
1: करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: जैसा
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ,
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात, बिल्कुल
1: ना
0: सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ। हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र,
0: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: हाँ बड़ौदा
0: हाँ
1: में मन्नादा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में वो

0: म्यूजिक जो मॉड्यूलेशन होता है
1: हाँ
0: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है.
1: जी जी
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो
1: हाँ
0: फ्लैट लगेगा और उस
1: जी जी
0: भाव नहीं आएंगे उसमें.
1: हाँ
0: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में. तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपनी आवाज में,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ और
1: अच्छा
0: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
1: ओह
0: रियाज करके,
1: क्या बात.
0: बहुत ही अच्छा. फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ
0: कि ज्यादा नहीं करना
1: हाँ
0: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में. बहुत ही
1: अच्छा.
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी ये
1: हाँ
0: शिल सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल.
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी.
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा
0: बहुत तीन
1: होगा.
0: बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा. अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ. तो
1: जी जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के.
0: लाइन
1: क्यों
0: में
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें.
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 दिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ हाँ
0: फोर कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबू से घर बांबू से दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुलाने मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह, मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा
0: क्लासिकल
1: जाने जाते
0: सिंगिंग
1: हैं.
0: जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा
0: क्लासिकल
1: जाए, जो
0: बहुत
1: लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे
0: लेकिन
1: उनके कई गाने हैं.
0: दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से दिए
0: लेकिन
1: हैं.
0: उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज
1: जी
0: में
1: जी जी
0: वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है.
1: जी जी
0: मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह
0: बहुत अच्छा थोड़ा सुना दो.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखा,
0: बहुत ही संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका
1: जी,
0: मिला
1: जी।
0: है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूं, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूं, तो मैं और क्या करूं, और किसमें हाथ क्यों डालूं?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओहो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ हंसते जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो तो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ,
2: वो मैं लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कॉम्पिटिशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए।
1: हाँ।
2: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
2: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोवर्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको
2: उन्होंने
1: गाते
2: देखा,
1: देखा
2: तो उन्होंने
1: तो
2: वो भी गाती
1: आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कशा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी

0: मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
1: हाँ
0: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं,
1: क्या
0: हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये
1: बात है, क्या बात,
0: वह
1: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
0: बहुत बड़ा
1: क्या बात। जी जी जी जी
0: कॉम्प्लीमेंट
1: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा,
0: हाँ,
1: ऐसा
0: हम
1: कोई
0: लोग
1: गाना?
0: तीन डुएट भी गाते थे,
1: जी,
0: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
1: ओहो क्या
0: फिर
1: बात है,
0: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: अन्ना जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी
1: क्या
0: होता
1: बात
0: था
1: है,
0: मेरे
1: क्या
0: शो में,
1: बात है,
0: ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने। तो
1: क्या बात।
0: उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
1: वाह,
0: हाँ, फिर उसी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो,
1: अच्छा
0: पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: नहीं
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को,
0: बाप रे
1: हाँ? रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ कदी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। और अर्जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह देओल।

0: तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: सुनिए,
3: कहिए,
5: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
5: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस वक्त 5 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंगरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मिंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, सस्कालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, सरगा, शिवनाथपुर, ललितपुर, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये आमगांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कूड़ेकेला, सिंघी छाप,

0: डोंगा भावना हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगुरसिया, नवागांव, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरी, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरी पानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के सुरीले सफर का पहला नजराना हम आपकी नज़र करते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपके हैं कौन इस फिल्म से। देव कोहली की रचना है और राम लक्ष्मण का है संगीत। लीजिए पेश है।

श्रोताओं, चितपट संगीत के पहले गाने को इस वक्त आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपकी हैं कौन इस फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। महिला सभा कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में फोन इन पर आधारित कार्यक्रम महीने के दूसरे मंगलवार को प्रसारित किया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग इस माह 11 मई सोमवार 4 बजे से 4:30 के बीच की जाएगी, यानी सोमवार के दिन आप शाम 4 बजे से 4:30 के बीच आप हमें फ़ोन कर सकते हैं महिला सभा कार्यक्रम हेतु। इस बार आपसे चर्चा का विषय होगा आँखों की देखभाल कैसे करें। आँखों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति आचार्य। और हमसे जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर है 2665923100026। याद रखिए, इन दोनों ही नंबरों को डायल करने के लिए आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। तो महिला सभा कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में दूसरे मंगलवार को यानी 12 मई को ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच। सूचना यहीं समाप्त हुई। चित्रपट संगीत के सफर का अगला सुरीला नगमा लीजिए पेश है राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सिंग इज किंग फिल्म से। मयूर पुरी के लिखे बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चितपट संगीत। चितपट संगीत के सुरीले सफर का अगला तराना हम आपकी नजर कर रहे हैं साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वर में गुप्त फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं, विजू शाह का बनाया हुआ संगीत। लीजिए सुनिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं,

हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: चित्रपट संगीत में लीजिए पेश है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में दाग द फायर, इस फिल्म का गीत। समीर की रचना है, राजेश रोशन का है संगीत। लीजिए पेश है।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। लीजिए पेश है सुनिधि चौहान और शेखर रवानी की आवाज़ में हनीमून ट्रेवलर्स। इस फिल्म से जावेद अख्तर की रचना, विशाल शेखर का है संगीत।

श्रोताओं, ये था अंतिम गीत चित्रपट संगीत के आज के सफर का। तो ये कार्यक्रम अब इसके साथ यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने, इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शंकर हुसैन फिल्म से। जानिसार अख्तर के लिखे बोल हैं, खयाम का है संगीत। और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं, हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया, धरदई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनित कृष्टि पटवा, मुंगवाल से भारत राम पटौडी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी, अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन मिथलेश, तारिणी ठाकुर, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरंगी भाटापारा से ही हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा, नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित ध्वनि, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी योगेश, संध्या कीर्ति, टिकेश वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, दिल्ली से मालती शर्मा, माया शर्मा, दिव्या और सीमा शर्मा, नैला जंजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमा, विष्णु प्रसाद तिवारी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल, चंपा साहू, और नैला से प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। लूथरा खमरिया से इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है अकरम अमीन, अर्श और आतिका ने। तो इन सभी साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में, सीता और गीता फिल्म से। आनंद बख्शी की है रचना, आर डी बर्मन का है संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की है। तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनरुन निशा और आयशा तबस्सुम। धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव सानेत राम, भूपेंद्र साहू। लुथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़। और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, निकिता। दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज, श्लोक, प्रियांश, श्रियांश, अनुभूति अग्रवाल। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ, मिथिलेश, टॉमिन, यश, प्रयाण और शिवम वर्मा। दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा, डब्लू अंसारी। नागपुर से कमल, पिंकी, अफजल मलिक। और करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनाश सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद फूलवाले। गिरिडीह झारखंड से साइमा नवाज, यासिन अनजान, हसन नवाज।

गिर से मोहम्मद बुराहुद्दीन। इस बार हम आपको सुनवा रहे हैं सीता और गीता फिल्म का गीत इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। लीजिए पेश है।

मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित ध्वनि, उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस और एकांश, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निर्मला विशाल, उजबट्टी से मुकेश मधु आशीष शिवान्या गोस्वामी, गुजरात से प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश, भाटापारा से विष्णु साहू पूरब वीरा हर्ष कुमकुम योगेश्वरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, दरियापुर बावली से गजानंद एले नवदीप विश्वदीप अशोक एले, खरगोन से उस्मान खत्री रिजवान खत्री अब्दुल गफ्फार खत्री, सोंगा से फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार पार्थ और हियांश चंदन ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है समाधि फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के सफर का अगला तराना हम आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में समाधि फिल्म से। शब्द रचना मजरू की है और संगीत आडी बर्मन का। पसंद हमारे इन साथियों की है, बठिंडा से परमेन सिंह, मनजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत। पथरिया से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, जेबा अजीम।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है शैलेंद्र और कंचन के युगल स्वर में रफू चक्कर फिल्म का ये गीत। गुलशन बावरा के लिखे बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत। ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं: पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम कृष्णा देवांगन, धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया अयान, कवर्धा से कैलाश, मुकुंद पूर्णेंद, साहिल चंद्राकर, खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, लोरमी चचड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी संजय संध्या, शिवम कोलाम, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल, महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव, निवित्ती, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी, भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, नेपानगर मध्य प्रदेश से हमारे साथी हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है रफू चक्कर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए पेश है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तीसरी मंजिल इस फिल्म से। मजरू की रचना, आर डी बर्मन का है संगीत। पसंद हमारे इन साथियों ने लिख भेजी है ईमेल के ज़रिए। जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से नरेंद्र सुराना, क्रांतिलाल, शरद मयंक, विमल, लालेंद्र, होलेंद्र, रोनी जैन, प्रमोद। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेयर अड़ोड़ा, कीर्ति, भूमिका, ममता अड़ोड़ा। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। दिल्ली से सुमित्रा, सोनिया, आयशा रानी। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा। राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची, प्रवीण। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी, बोडखे, नंदा, हनुमान और उत्तम। आइए सुनते हैं इन साथियों की पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं ईमेल करें गीत सुनें। जी हाँ, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। हम आपको बतला दें कि आज इस कार्यक्रम के बारी बारी से तीन भाग आप सुन सकेंगे। पहला भाग यहीं समाप्त होता है, दूसरे भाग में 6:20 पर आपसे होगी हमारी मुलाकात। फिलहाल संध्या के 6:05 होने को हैं। कार्यक्रम विवरण कुछ ही पलों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज संध्या 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत की महफिल में आप सुनेंगे हरी हरण के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी तराने। 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके अलावा संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड ला जानो। इस विषय पर विस्तृत से होगी चर्चा। आगे संध्या 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के तहत आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा मिट्टी परीक्षण ले लाभ। इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे जिला जांजगीर चांपा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ए.के. जारव। श्रोताओं, ये तो थी आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको कल सुबह और शाम के मुख्य आकर्षणों के विषय में बतलाते चलें। कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात। 7:40 का समय होगा सदाबहार नगमे का। 8:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम का आप लेंगे आनंद। और 10:30 पर नए तरानों के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ बच्चों, जिसमें चर्चा का विषय होगा ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं मदर डे। आगे इसी कार्यक्रम में क्विज ऑल रेडियो क्रम का आप लेंगे आनंद। इसके अलावा कल शाम 5 बजे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का। शाम 5:35 संध्या 6:20 और कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हमारे ही केंद्र से। 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम रायपुर केंद्र से करेंगे। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे नुसरत फतेह अली खां। और कल रात 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके अलावा साथियों, कल संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में मेरा के गोट का विषय होगा बिजहा के उपचार और भंडारण जरूरी होते। आगे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम आप मन के गीत। और इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है।

0: जी हाँ साथियों, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज छत्तीसगढ़ के कतको न्यायालय मां राष्ट्रीय लोक अदालत के होइस आयोजन। न्यायालय मां लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला मां आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा मां प्रदेश के कुछ जगह मां तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद औ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मां होइस आज बड़का रद्दा हादसा। ए घटना मां कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के होगे मौत। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय मा आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुईस। एबेरा मा न्यायालय मा लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गिस, जेमा आपराधिक प्रकरण के संगे संग मोटर दुर्घटना प्रकरण, बिहाव ले जुड़े परेशानी, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधित प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी ले संबंधित प्रकरण हा शामिल रहीस। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगा के लंबा बेरा के मामला सुनवाई करे जाही। पक्षकार मनला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फारम में देना होही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग हा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई के घोषणा कर दे है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताएं कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई ले शुरू होगी, जो उनके 4 जून तक चलही। नामांकन पत्र 11 ले 18 मई तक भरे जाही, जेकर जांच 19 मई के होना है और नाव वापस लेके आखिरी तारीख 21 मई रखे गए हैं। मतदान एक चरण में 1 जून के होना है, जबकि परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयुक्त बताई है कि नगरी निकाय चुनई ईवीएम ले दलीय आधार मा और पंचायत चुनई मत पेटी के माध्यम ले गैर दलीय आधार ले कराए जाही। चुनई वाले जगह मा आदर्श आचार संहिता लागू हो गए है। जानवा के अनुसार नगरी निकाय मा अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनई कराई जाही। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के चलत बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण के शिविर के आयोजन हुईस। इस शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। एबेरा में श्री वर्मा हितग्राही मनला ट्रैक्टर के चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और आने सामग्री भेंट करें। इस शिविर में 2300 ले ज्यादा आवेदन मिले रहीस, जिमा ले 272 आवेदन के मौका मही निराकरण करेगी से। छत्तीसगढ़ में अभी मकान सूचीकरण और मकान

0: के गिनती के काम चलत हे। इही कड़ी मा बलौदा बाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा हा आज मुंडा गांव मा प्रगणक मन कोती ले करे जात जनगणना के काम के निरीक्षण करिन। ओमन हा प्रगणक मन ले मोबाइल लेके खुदे एक झीन मकान मालिक के घर मा पहुंच गए और मकान गणना संबंधित सबो जानकारी लेके डिजिटल गणना ला पूरा करिन है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग हा सबो निकाय ला पीए के पानी ले होवत परेशानी ला दूर करे के निर्देश दीन है। विभाग हा सबो निकाय ला बोरिंग बोरवेल मान मा एक हफ्ता मा जांच करके ठीक करे बर कहिन है। संगे संग टूटे पाइपलाइन ला तुरते सुधारे और नाली ले होके जाए वाला पाइपलाइन और घर के कनेक्शन ला घलो स्थानांतरित करे के निर्देश दीन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चलत प्रदेश भर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1300 ले ज्यादा जोड़ा मन के बिहाव हुई। ए बिहाव हा राजधानी रायपुर समेत सबो जिला में पारंपरिक रीति रिवाज के संग करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा नवविवाहित जोड़ा मन ला बधाई दीन है। ओमन हा कहिन है कि योजना हा जरूरतमंद परिवार के बड़े चिंता ला दूर करत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले पद्मश्री बर चयनित गोडबोले दंपत्ति ले लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण काली बिहिन्या 10:30 बजे ले 11 बजे तक करे जाही। ए कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी रायपुर।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़बो बाची समाचार कोती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली 10 मई के नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और गर्मी ले निपटे के तैयारी के समीक्षा करही। एमा केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी के बीच अच्छा समन्वय NDRF ला सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदा के बेरा शून्य जनहानि के दृष्टिकोण में सरलग ध्यान देना शामिल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मा काली रायपुर मा हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम मा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा शामिल हुईन। ए मौका मा उमन हा किहिन कि निस्वार्थ भाव ले लोगन मन के सेवा करना ही सबले बड़का धर्म हरय और इही रेड क्रॉस के असली पहचान है। कार्यक्रम मा लोक नृत्य चित्रकला और नाटक प्रतियोगिता के विजेता मन ला इनाम दे के संगे संग प्रदेश के 64 रेड क्रॉस स्वयं सेवक मन ला प्रमाण पत्र देगी। एकर अलावा अंगदान रक्तदान नेत्रदान और समाज सेवा में योगदान देवैया लोगन मन के संग अच्छा काम करैया कलेक्टर मन ला घलो सम्मानित करेगी। ए मौका में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सम्मेलन घलो हुईस। उन्हें रायपुर जिला प्रशासन कोती ले प्रोजेक्ट छाव के चलत लोक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाए गईस जेमा सामान्य बीमारी के संगे संग हृदय रोग कैंसर किडनी स्त्री रोग और आने गंभीर बीमारी के निःशुल्क जांच करेगी। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज हुए एक रद्दा हादसा में 3 झीन जवान लड़का मन के मौत हो गए। पुलिस ने बताया कि देवरी गांव ले ए तीनों झीन मोटरसाइकिल ले डोंडी लोहारा कोती जात रहीन। फिर इही बेरा खैरीडी गांव करा आगू ले आवत कार हा ए मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दिस। टक्कर हा अतेक जोरदार हा रहीस कि ए तीनों जवान लड़का मन के मौका में ही मौत हो गए। एती सूचना मिलतेच पुलिस हा घटनास्थल में पहुंचीन और सब ला पोस्टमार्टम बर भेज के मामला की जांच शुरू कर दे है। ओती गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में घलो मजगवा गांव में एक ठिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हा रद्दा ते बैठे 3 झीन मनखे ला टक्कर मार दिस जेकर से तीर कका और भतीजा के मौका में ही मौत हो गए और उन्हें एक झीन आने हा गंभीर रूप ले घायल हुए है। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल की टीम बड़का मात्रा में माओवादी सामान जब्त करे है। हमार संवाददाता बताइन कि सुरक्षा बल की टीम तलाशी अभियान के चलत तोके के जंगल में बड़का मात्रा में हथियार गोला बारूद और IED बनाए के सामान जब्त करे है जेमा 315 बोर राइफल 12 बोर राइफल रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोतिले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले

0: की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक मा बालोद जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब जानन मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग ले मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक ठेन चक्रवात बने हुए हैं। उन्हें राजस्थान ले लेके मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ ले लेत हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है, जेकर से तीर मौसम में बदलाव आए है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग में पानी गिर सकत है। उन्हें 11 मई ले तापमान हा बढ़ सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के हुई आयोजन। न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। और बालोद और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में हुई आज बड़का रद्दा हादसा। एक घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के हो गए मौत। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा भाग। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए पेश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में सिलसिला फिल्म का गीत। राजेंद्र किशन की है रचना, शिवहरि का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर और नारायण यदु। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप, सुनीता, योगेश। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी वर्मा। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश। यवतमाल से पंजाब रामटके, यशोधरा रामटके और श्रव्या रामटके। महाराष्ट्र से विठल, सुषमा, परिधि, मायरा। दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा। महाराष्ट्र से सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि, महेश रामटके। और तखतपुर से हमारे साथी हैं मिशीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। गुमला झारखंड से नजमुल होता, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। महाराष्ट्र से अमोल, शोभा, दीपाली, श्लोक कुमार। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभैये। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। बागबहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति, ख्याति कुमारी। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। ओंकारेश्वर से सपना, अंबिका, अनीता, चिंकी, मिंकी, पिंकी। और देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली ने इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए पेश है सिलसिला फिल्म से।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है कभी कभी फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर का है संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। चंडीगढ़ से हैं राहुल, रचिता, किशु, रिधान, खुराना। हनुमानगढ़ से वेद और अलका। उजभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवान्या गोस्वामी। पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल, सावित्री देवी, ईशांत, तनुजा दिवांगन। रिंगा खार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम। मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सुहान, सरफराज, फरदीन, अरजान, अबान अब्बासी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश। दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका, भानुप्रकाश, निशु। नरगोड़ा से केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी गोस्वामी। बलौदाबाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू। और दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने भी इसी गीत की फरमाइश भेजी है। तो लीजिए, पेश है कभी कभी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का दूसरा गीत अभी अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। साहिर की रचना थी, खयाम का था संगीत और फिल्म का नाम था कभी कभी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुहाग फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई यामिनी और उमा तिवारी, बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश, और बरकाकाना से अफजलताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहिनी, मोहम्मद अफजल मलिक, अडार नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमीदुन जिशान अहमद सिद्दकी, शहनवाज अहमद सिद्दकी, जमशेदपुर से हमारे साथी हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, बोरी खुर्द से सुधाकर, प्रशांत, जगुताई, साक्षी, और सहारनपुर से सैयद मशहूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां और मन्नत जहां। इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है जौनपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित करवी, जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, अकोला से सुशीला देवी, सदानंद गौरव, यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, महाराष्ट्र से संतोष, सुकन्या, सुनैना और सविता, इंदौर से नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना, स्वाति, प्रयाग, पांडर कवड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। और इसी गीत की एक और फरमाइश आई है राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का, तो लीजिए पेश है सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुहाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दे चलें। महिला सभा कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में फोन पर आधारित कार्यक्रम हर माह के दूसरे मंगलवार को प्रसारित किया जाता है। इस क्रम के दौरान इसकी रिकॉर्डिंग इस माह 11 मई यानी सोमवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच की जाएगी और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 12 मई मंगलवार शाम 5:35 पर। इस बार आपसे चर्चा का विषय होगा आँखों की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति आचार्या और आप हमें अपनी परेशानियों और अपने मन की बातों को पूछने के लिए हमारे इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665923100026। याद रखिए इन दोनों ही नंबर को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। तो स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार की चर्चा का विषय है आँखों की देखभाल कैसे करें। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति आचार्या। आँख संबंधी किसी भी शिकायत या परेशानी के विषय में आप हमारे नंबर पर कॉल लगाकर हमसे या इन डॉक्टर साहिबा से अपनी परेशानी बताकर सुझाव पा सकते हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के विषय में एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच और इसी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 12 मई मंगलवार शाम 5:35 से हमारे ही केंद्र से। सूचना यहीं समाप्त हुई।

श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के इस वक्त 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी रायपुर की ओर।

श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के इस वक्त 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी रायपुर की ओर।

0: आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह

0: संबंधी विवाद, जलकर संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने महासमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी, जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इस बीच आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में

0: दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्रियां भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 से 11:00 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम बजगवा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा चयनित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची कल जारी की गई। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आज राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
1: आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी जाने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर। बाकी जिले जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मई से प्रदेश में मेघ गर्जन का गतिविधि कम होने का चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 10 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक क्रमिक वृद्धि आने की संभावना है।
0: नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपये नकद, 6 मोबाइल और एक नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घुघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के इस वक्त 7 बजने वाले हैं। चलिए अब रुक करते हैं, ईमेल करें गीत सुने इस कार्यक्रम के तीसरे और आखिरी पड़ाव की ओर। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले अंश में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में नमक हलाल फिल्म का गीत। रचना अनजान की है और संगीत बापी लाहड़ी का। पसंद ईमेल के जरिए जिन श्रोताओं की हम तक पहुंची हैं उनके नाम हैं अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस रेहान, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, लोकगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप, गुलजार, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह, मंडी डब्वाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, तानिया, पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा, सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस, इसरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा, राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, महेश चंद्र डांगी, और श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। अकोला से हमारे साथी हैं रमेश, वैशाली, धनंजय, सहारनपुर से सोनाली, आशा, सुरेश, पथिक और कृषिव, भाटापारा से दानसिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लिल्लू और ऋतु सिंह, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, आरती, प्रभा देवी तामुरिया, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कामड़े, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरस, अनिल, अजित, आयुष, नंदिनी जंघेल, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, बग बुड़वा से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, और उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन, गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, पंजाब से राज शर्मा, योगेश, मीना, निवान, सौरभ, शायना, मैंडी शर्मा, पंजाब से हरदेव, जगदेक, बलविंदर, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव सैनी, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू, रेशमा साहू, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में नमक हलाल फिल्म के इस गीत के साथ।

ईमेल करें गीत सुने। इस कार्यक्रम का लीजिए पेश है अब आखिरी गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में मोहरा फिल्म से। आनंद बख्शी की है रचना, विजू शाह का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम है गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु विशाल, दिवांशी, शालिनी और इनके बहुत सारे साथी। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट। महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। कुलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडु रंग। हरियाणा से अंकित, मोनी, प्रिंस, सीताराम, साहिल। अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा। लालपुर मारो से कृति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी और निशांत ध्रुव। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार। उदयपुर सरगुजा से हमारे साथी हैं जीवदन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम और हीरामणि पैकरा। हरियाणा से जसबीर, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर। कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां। मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है इन साथियों की पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में मोहरा फिल्म का ये तूफानी सा गीत।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं
0: बेटा? वो जगह

0: दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: अब भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे। वाह,
2: घर से दूर भी अपनों के साथ जब हो रेडियो पास।
3: श्रोताओं, उसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:20 हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जमो किसान भाई बहनी मिल्ला वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम जय जोहार। किसान भाई बहनी हो, देखो भाई समय बदलत टाइम नहीं लगा है, कतका घाम रही सवय और संझा होत होत कह जाए पानी हवा गर्रा ये जमो आगे कह जाए। तो किसान मल्ला हमेशा कह जाए तो मौसम के अनुसार सचेत रह पड़ते किसान भाई हो, और खास करके हमार जिन छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो मल्ला आनी बानी के फसल लगा रही थे खेती किसानी आगू बढ़े करके, और फिर कभी कभी प्रकृति के जिन खेल है वो निराला होते। एखरे सेती किसान मन बर हमार जिन सरकार है बहुत बढ़िया सुविधा दे के काम करत हवे। बात करबो किसान क्रेडिट कार्ड ला जानो, तो किसान संगवारी हो ए किसान क्रेडिट का होते, एखर उपयोग कैसे करे जाते, एला काहे किसान सरकार द्वारा किसान मन बर बनाए जाते। तो बात करबो हम आपन देखो खेती करे बर पैसा के बिना खेती है बिल्कुल नहीं हो संगवारी हो, काबर हर पग में पैसा के जरूरत पड़ते खेती किसानी करिय तो ओखर से लागत पहली आप मन एमा लगा ले पड़ते, ओखर बाद फिर चार महीना छः महीना के फसल होते, ओखर बाद फिर ओखर जिन लागत वोला वसूल करना है, ओखर बाद फिर आप मन ला अपन इनकम भी करना है, वही में घर द्वार सब बोला चला पड़ते। तो कभी कभी ऐसा हो जाते कि हाथ में पैसा नहीं रहे, जब हाथ में पैसा नहीं रहे तो फिर किसान मन ला भाई बीजा है खातू है दवाई है सिंचाई है, तो ये जमो चीज पर तो भाई पैसा लागबे करी किसान भाई हो, है ना। और आपन के पास में कहीं पैसा नहीं है बड़ा दिक्कत हो जाते, तो एकरे बर सरकार जिन्हें दबाव ला टेंशन ला दूर करे बर कम करे बर सरकार किसान मन बर किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाते किसान भाइयों। तो देखो संगवारी हो किसान क्रेडिट कार्ड एक किस्म के बैंक लोन सुविधा आए, जेखर ले किसान मन ला आसानी ले और कम ब्याज दर मा कर्जा मिल जाते, जला KCC है ना कह जाए। तो एक है प्रमुख लाभ घलो आप मल्ला हम बताते संगवारी हो, किसान मल्ला समय में पैसा मिल जाते, ब्याज दर कम रही थे और जरूरत अनुसार पैसा आप मन निकाल सकत हो। ऐसे नहीं है कि अब पैसा आप मन के खाता में आ गए तो एक के पैस सबो पैसा ला निकाल लिए, ऐसे नहीं है। आप मन के ऊपर है कि जितका आवश्यकता है खातू के माटी के ट्रैक्टर के है ना कीटनाशक दवा के बीजा के ओकर अनुसार आपन खेपी खेपी करके आप पैसा निकाल सकत हो किसान भाइयों। तो ये सुविधा है और फसल खराब होए मा राहत सुविधा घलो मिल जाते खल ले, है ना। तो ये देखो किसान क्रेडिट कार्ड ला आपन जरूर बनवाओ और बहुत सरल सुगम है संगवारी हो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना। तेखर बार आपन ला कैसन की जैसन प्रक्रिया आप मन ला बतावा था ना, खैर प्रक्रिया है तो आप मन नजदीकी बैंक या सहकारी समिति आप मन के गांव में सोसाइटी है प्राय हर गांव में ग्राम पंचायत में सहकारी समिति बने रही थे, आजकल बैंक भी हो गए है, वहाँ आप मन अपन जी

खातू लेथव बीजा लेथव वहाँ सहकारी समिति में जाके आप मन आवेदन कर सकत हो। ओखर बर आप मन ल जरूरत पड़ते किसान भाई हो आधार कार्ड जमीन के कागज पर्ची के फोटो कापी कह जाए आप मन के पासबुक के फोटो कापी है न तो ये जमो चीज ल आवेदन के संग में फोटो घलो लगते तो एला आवेदन के संग लगा देवा तो आपके आवेदन स्वीकृत होए के बाद किसान ल कार्ड दे जाते। तो ये तो हो गई किसान क्रेडिट कार्ड के महत्व के बारे में। अब आओ कुछ संदेश सुन लेते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो किसान भाइयों, अब मन हुआ थे वाहरे मोर पड़की मैना। अब ये समय खेत खाठर जहा तो पड़की मैना दिखाई देवे करते, मगर ये पड़की मैना अपन जिन मयावरी हुए है ना, उह मल्ला मोर पड़की मैना करके बुलाए जाते छत्तीसगढ़ी में। आवा ये भाव भरे गीत सुने थन लक्ष्मण मस्तुरिया के स्वर में।

किसान भाई बहनी हो बर बिहाव बहुत चलत रही सवय थोड़का नब कमतिया इसे कहे जाए। और जब उतीले किसान मला बेरा मिलते तो अपन खेती किसानी तरफ सब ला चेत करे बर है कहे जाए किसान भाई हो। और चेत करबो तभे हम सबके जिन सही समय मा सही बीज के चुनाव करबो तब हमार जिन फसल है वो बड़ा अच्छा पैदावार देते किसान भाई हो। और कई बार हम देखथन कि कई जगह मा सिंचाई के यानी कि पानी के प्रबंध अच्छा नहीं हो के कारण जमीन तो अच्छा है भुइयां अच्छा है किसान मेहनत करते मगर थोड़क भर चूक जाते वो हरे पानी के कमी। तो ये पानी की कमी अगर आप मन के गांव मा आप मन के नजदीक कहीं ऐसा है तो उखर भर सरकार द्वारा एक बहुत ही बढ़िया अच्छा योजना जेला कहे जाते उद्वहन लिफ्ट सिंचाई योजना। आप मन कहे ये उद्वहन लिफ्ट सिंचाई योजना का है देखा नामे ले पता चल रहा थे संगवारी हो कि एक हर जन उपयोग है हन खास करके वो जगह में करे जाते जहाँ पानी यानी कि जैसे तालाब है या नीचे खाले में नरवा है नदिया है या दुरिया में हवा तो एक हर मतलब है नीचे ले पानी ला खींच के ऊपर खेत तक के पहुंचाए जाते। अब ये समस्या ला दूर करे पर ये उद्वहन सिंचाई योजना बनाया गया है किसान भाइयों। कई बार हम नदिया के तीर जाथन जैसे सरगांव तरफ करही वगैरह जाथन होती बार तो देखे हैं रास्ता मा कि नदी सिनाथ नदी ले पानी ले पानी ला खींच के कहे जाए तो किसान मन बर खेत मन के प्यास बुझाए बर ये उद्वहन जिन सिंचाई योजना बढ़िया लगाए गए है वही तरफ आओ आगे बढ़ो तो आम गाँव है उहू उसने लगे है जेखर ले किसान मन ला बढ़िया लाभ होते एमा होते का सरकार ह सहायता करते किसान भी हो। और उद्वहन सिंचाई योजना किसान मन अब अगर समूह बना के लेना चाहते तो गांव के मनखे मन बार किए जाते जैसे नीचे या दूर के पानी ला मशीन या पंप के मदद ले ऊपर उठा के खेत तक के पहुंचाते। ये योजना में सरकार किसान मनला पंप पाइप और बिजली डीजल के सुविधा पर मदद करते किसान भाई हो तो इखल फायदा आप मन कतका हुई देखो। सूखा या कम पानी वाला इलाका खेती करके आप फसल लहलहा सकत हो साल भर सिंचाई सुविधा आप मनला मिल सकत है जिखल फसल उत्पादन आप मनला बढ़िया प्राप्त हो है। तो इस प्रकार ले आप मन भी उद्वहन सिंचाई लिफ्ट योजना के अपन अपन देख लो गांव में नदिया है नरवा है या तला है खाले में कहीं या ऊपर माप के खेत है तो ये उद्वहन लिफ्ट योजना के आप लाभ ले सकत हो। और अब आज के सवाल एक ठो आप मन से करत हैं किसान भाइयों सवाल ऐसा है कि माटी जांच काहे जरूरी है। अब ये माटी जांच काहे जरूरी है सवाल के जवाब लुका है आज के भेंट वार्ता में मिट्टी परीक्षण ले लाभ उखन नाम है कहे जाए है ना। और श्री ए के हमला आज बतावत है जाटो ये मन है प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अकलतरा के तो इखर से

0: हमार जैन भाई हमार पंचू है और मिट्टी परी एक बताऊ नाम गलत हम बोल पा रहे हैं, मिट्टी परीक्षण ले लाभ श्री विजय सिंह बौद्ध जी मन है और ये मन है कृषि विकास अधिकारी अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के अखर से गोट बात करा थे हमार पंचू भैया तो आओ सुन लेते निखर गोट बात।
1: संगवारी हो राम राम जय जोहार, मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंची भाई रुपेश कुमार कंवर। अक्ति तिहार मनाए के बाद हमन अपन खेती किसानी बूता काम ला शुरुआत कर देतन कही तक खरीफ फसल के तैयारी में। अभी बेरा मा जोन किसान भाई मन करा गाड़ा बिला हवाए वो मन अपन जोन घुरवा के खातू माटी है ओला खेत में जाके छिड़काव करत है। संगे संग कतेक किसान भाई मन अभी ले बीजा भात के तैयारी में लग चुके है, खेत के तैयारी में लग चुके हवाए। मेहनत हमन 4 महीना अबड़ पोट करतन ताकि हमारे फसल ज्यादा से ज्यादा हो। आखिर बेर में ठगातन तब जब फसल हमारा अच्छे से हुआ नहीं, कारण दुए ठग रहते या तो हमारे अच्छे से बीजक चुनाव नहीं कर पान या तो हम माटी जांच ला नहीं करा पान। संगवारी हो यही क्रम में आज की विषय हवा कि माटी जांच कराए ले लाभ का होते। आज हमारे बीच में फोन लाइन के माध्यम से पहुना जुड़े हवा श्री विजय सिंह बौद्ध एवं हमारे कृषि विकास अधिकारी माटी परीक्षण प्रयोगशाला जांजगीर चांपा ले। बौद्ध जी आज के कार्यक्रम में अपन के स्वागत करथन, जोकाओ जय जोहार राम राम।
2: जय जोहार राम राम पंचू भैया।
1: आपका जानना ये चाह माटी परीक्षण संतुलित उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई मन कौन प्रकार से करे एला बताता आप।
2: पहले ये जान ली कि माटी परीक्षण के संतुलित उर्वरक संतुलित खातु नहीं डाले से का होते। खेत में मुख्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास और सल्फर जिंक और आयरन इसका के खातु चाहिए। अब इधर खातू हमारे खेत में पहली लगत है जेला हमारे किसान भाई मन नहीं जाना है।
1: अच्छा।
2: अब वो मिट्टी परीक्षण करे से हमारे खेत में कतका कन नाइट्रोजन हवा है, कतका कन फास्फोरस है, कतका कन पोटास है, एक जानकारी मिल जाये। अब मान ले जाए हमारे खेत में पहली नाइट्रोजन ज्यादा है या फास्फोरस ज्यादा है या पोटास ज्यादा है तो ओला यदि हम खेत में डालत हन तो फसल के दही बढ़वार नहीं होए। जैसे नाइट्रोजन ज्यादा रही तो पौधा डंग डंग ले बार जही ओकर बाद गिर जही तो फसल उपज नहीं आवे। लेकिन यदि उमर सिफारिश के हिसाब से खातु ले डालबो तो का है ओकर खर्चा भी बांच जही और उपज भी बढ़िया आही।
1: अच्छा, जे प्रकार से हम अपन सेहत के जाँच बर आनी बानी के खून जाँच कराथन सोनोग्राफी कराथन कही देव नहीं।
2: हाँ,
1: वही प्रकार से माटी के भी ऊपर सेहत ला देखा ओकर जाँच हम कराना चाहिए की देवा
2: बहुत जरूरी है। तभी तो फिर ओकर हिसाब से हमार मिट्टी के और फसल के ठीक
1: दोनों बराबर तालमेल बैठी की दवा। जिसे जानना चाहबो कि माटी परीक्षण के उत्पादन में लागत जो हवा है कतेक कमी आ सकत है ला बताता आप।
2: एकर ला एक उदाहरण के रूप में बताता मान लेवा कि कोई किसान रवि भाई है वो साग भाजी के 1 एकड़ में मान लेवा 3 बोरी यूरिया डाला और जाँच करेगा पता चल गई की भाई ओकर खेत में ऑलरेडी 1.5 बोरी यूरिया है तो 1.5 बोरी ही यूरिया डालगी तो इस तरह 1.5 बोरी यूरिया के खर्चा बच जही। अब हर साल या हर फसल में 1.5 बोरी यूरिया के पैसा बचत जही तो कतना खर्चा बच जही ओकर जी इससे हर तत्व के साथ रहते। एकरे पर भारत सरकार के मृदा कार्ड योजना है और यही काम ला हमन करथन कि किसान के अधिक खर्चा मत हो और उपज बढ़िया मिले।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे अभी आप बता था कि भारत सरकार कती ले माटी जांच करा था गई का एकर वैसे कुछ योजना हवा का फिर बताता थोड़ा सा।
2: मिट्टी जांच कराए की योजना हवा एकर ब्लॉक लेवल में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रखे उमन चयन करते एक गांव के और चयनित गांव के सबको किसान के मिट्टी ला उमन जांच करके चयन करके लेके जाते और फ्री में मिट्टी के जाँच होते।
1: अच्छा, 1 रुपया पैसा कौन नहीं लगे की दुआ
2: नहीं।
1: जैसे की बात करी हमन फसल के उपज और गुणवत्ता ला ज्यादा से ज्यादा हम आए बार अगर करना हमें तो कौन प्रकार से होते एला थोड़ा बताता आप।
2: फसल के पैदावार और क्वालिटी बढ़ाए बर जब माटी में हर पोषक तत्व के सही अनुपात में रही तभे जैसे धान के जैसे पोटास और होते पोटास खातु डाले दाना के वजन बढ़ते दाना के चमक बढ़ते दाना के साइज बढ़ते तो एकर से तुम्हारा उपज बढ़ी। हर भाजी में फल के भी आकार बढ़ते स्वाद बढ़ते तो इस तरह से उपज और क्वालिटी पर बढ़ते।
1: ये प्रकार से हम अगर हम माटी के देख रेख करी तो कहीं के ऊपर से उपज बढ़ बेच करेगी दो। जैसे कि बात करें हम अपन सेहत के अच्छा रहे बरानी बनी के खातन पीतन हरे हरे साग भाजी खातन उसे नहीं अगर माटी परीक्षण में माटी के स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करबो तो कौन प्रकार से हम ओकर सेहत का ख्याल रख सकी संरक्षण कर सकी एला बताता आप।
2: देखा बार बार एक एक किस्म के खातु ला खेत में डालत रहे का होते कि खेत में के माटी में लवण यानी नमक के मात्रा नमक जमत जाते जेकर ले माटी है बंजर हो जाते और जांच से अम्लता माने पीएच के मान के पता लगते और छारिंदा

0: या जमीन में नमक अधिक है एकरो पता चल जाती। माटी में अम्ली है तो ओकर पीएच 6 ले कम है और 6 ऊपर रहते तो क्षारी हो जाते, तो ये जो अम्ल कम हो जाते तो मैं चूना डाल के वाला फिर से उपजाऊ बनाया जा सकते। इसी तरह से माने मिट्टी के स्वभाव ला जांच करके ओकर हिसाब सिफारिश के अनुसार ना दवाई डाल के वाला सुधारे जा सकते थे जी।
1: जैसे बात करबो हमर जांजगीर चांपा के, तो जांजगीर चांपा में का है कि आपके नहर हवे तो लगातार किसान भी मन धान धान फसल ज्यादा अपना का, लगातार अगर हम एक ठक फसल अपनावा तो का माटी के उपजाऊ क्षमता थोड़ा प्रभाव पड़त हुए का?
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर पड़ते भैया। का है धान है गेहूं है मक्का है ये मान ला ज्यादा पोषक तत्व के जरूरत रहते और फसल चक्र परिवर्तन घलो जरूरी है। एक से का
1: अच्छा
0: जैसे यदि हम दलहन लगाते हैं दलहन तिलहन, तो दलहन तिलहन मन का होते उमन खुद तो खातु कम लगते और वो खुद नाइट्रोजन ला पर्यावरण से बनाते और नाइट्रोजन बना के खुद उपयोग करते और बाद जब फसल खत्म हो जाते ऊपर जड़ी में रखे तो हर माने नाइट्रोजन ला आगामी फसल पर भी छोड़ के चल देते। तो इस तरह से फसल चक्र परिवर्तन करे से हम भी हम ला खातु के कमी लगते माने कम डाले वाला लगते।
1: यानी कही था जितके ज्यादा का हम धान के बाद अगर उन्हारी का ध्यान देवत हम अकरी है तिवरा है तो कहीं कहीं जो खेत के माटी उर्वरक क्षमता हम बढ़ा सकत हन की देवा?
0: बिल्कुल बढ़ा सकत हन।
1: जैसे बात करी माटी परीक्षण के तहत अगर हम फसल के चयन करत हन तो कौन आधार में करी और कैसना माटी में करी एला थोड़ा बताता आप?
0: जैसे करिया माटी जो सबसे ज्यादा उपयोगी कन्हार माटी कहे जाते हैं, कन्हार माटी में वैसे तो सब फसल लिए जा सकते हैं लेकिन हमारे जांजगीर जिला में ज्यादातर धनहा खेत है, खासकर बरसात में तो गहिरा खेत ज्यादा है तो गहिरा खेत में धाने लगाते तो धान तो धान में पोटास और जिंक भी बहुत जरूरी होते। जैसे कि हमारे भोजन में संतुलित आहार को लाते उसी प्रकार से हमारे फसल अभी संतुलित आहार चाहिए तो हर फसल के अलग अलग मात्रा में नाइट्रोजन कतका डालना चाहिए, पोटास कतका डालना चाहिए, स्फुर कतका डालना चाहिए और आजकल अधिक उपज ले वतन तो जिंक सल्फेट भी एक आधार बेसल डोज के रूप में दे भर लाते।
1: अच्छा अच्छा
0: एक माटी परीक्षण के आधार पर फसल विशेष के सही अनुपात बताए जाते ओकरे हिसाब से खातु डालना चाहिए किसान।
1: अच्छा अच्छा जैसे बात करी माटी परीक्षण के अंतर्गत तो कतका दिन तक एकर हमन लाभ ले सकत हन एक बार माटी जांच करा सकते हैं बताता?
0: एक बार माटी जांच करा सकत हन तो कम से कम 3 से 5 साल तक हम लोग दोबारा जांच करवाए से जरूरत नहीं है। कम से कम 3 से 5 साल तो पर्याप्त है
1: फुर्सत की देवा
0: फुर्सत एक जांच करवाया था।
1: जैसे कि माटी जांच करा था और अगर हमारे कर एक एकड़ के खेत में माटी हम अगर निकालना हो तो कौन कौन जगह की माटी निकालना चाहिए और कते गहरा ला निकालना चाहिए और कते कन माटी एला थोड़ा कन बताता हमारे किसान भाई मन ला?
0: एक खेत मान ले जाए 1 एकड़ के है तो कम से कम 4 से 5 जगह से माटी निकाले वाला थे और माटी मेरे तीर के लिए नहीं लेना है, खातु पुढ़ा के लिए नहीं लेना है, ज्यादा रूप छही है पे जगह के लिए झन लिहा, चारों कोना के और बीच के बढ़िया जगह माने जम्मू कोती के थोड़ा थोड़ा माटी लेना है, 9 इंच तक के लेना है, खुरपी ऊपर से लेकर नीचे तक के 9 इंच के मिट्टी लेना निकालना है, निकाले के चारों पांचों जगह के लिए एक मिला ले भुरभुरा छाया में सुखा करके और सब एक मिला करके आधा किलो एक नमूना पर आधा किलो मिट्टी हमें चाहिए
1: उसका पर्याप्त रहते किलो
0: पर्याप्त।
1: जैसे कि बात करी हमन ज्यादा फसल के लालच मानी मानी के खातू माटी और कीटनाशक के छिड़काव करत हन की ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा हुआ की सरकार चाहते है आपकी विभाग चाहते है कि हम जुन्ना जुन खेती करत रहे प्राकृतिक खेती वो ढंग फिर चले की क्यों, तो हमारे किसान भाई मन ला बताता कि प्राकृतिक खेती होते का और कैसे हमारे माटी ले माटी उर्वरक क्षमता बढ़ा सकी एक बारे में थोड़ा बताता?
0: लंबा समय तक माटी के उपजाऊपन बनाए रखे बर तो सबसे पहले हर 2-3 साल में माटी के जांच कराए बर रही तो ऊपर से का है एक प्रकार के हमारे करण डाटा बन जाते एकर से हम देख सकते हैं कि हमारा माटी है सुधरत है कि बिगड़त है हमारे खुद पता लगते।
1: अच्छा,
0: और एक सुधार करे बर जैविक खाद हरी खाद छन ढेचा के फसल वाला लगा करके फिर खेत में सरा के ओकर बाद फसल चक्र अपना करके साथ में अभी नया बीज ब्लू ग्रीन एलगी के उत्पादन करे बर और एकर साथ राइजोबियम कल्चर एजोटोबैक्टर कल्चर और पीएसबी कल्चर किसिम किसिम के कल्चर आते ये भी जैविक खातु है एकर भी उपयोग कर सकत हन और अपन घुरुआ के बढ़िया अच्छा मात्रा में गोबर खत्ता लगे डाल सकत हन एकर से मिट्टी के क्वालिटी सुधरते और जब तक हमारे मिट्टी की क्वालिटी नहीं सुधरी तो ऐसे अंधाधुंध खातु डालेंगे बहुत दिन बाद हमारे खेत बंजर हो जाएगी तो आने वाला पीढ़ी के लिए भी हमारे मिट्टी उपजाऊ रहे एकर लिए ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद के उपयोग करे ला पड़ी हमारे तभी हमारे माने माटी है बढ़िया रही।
1: अच्छा जैसे बात करी आज हम प्रशासन की बात करी आपके कृषि विभाग की बात करी कौन प्रकार के माध्यम से आप किसान मन ला जागरूक कर था कि हमारे माटी की जांच कराना चाहिए।

0: बताता हूँ।
1: तो हमन के प्रयोगशाला मिट्टी परीक्षण केंद्र जांजगीर में है। तो जांजगीर जिला के अंतर्गत सभी विकास खंड के किसान भाई मन अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से मिट्टी के नमूना ले सकते हैं, और मिट्टी के नमूना ले करके वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से ही हमन कर भेजवाही, तेला हमन जांच करके फिर रिपोर्ट उकरे माध्यम से किसान तक पहुंचवा था।
0: अच्छा, जैसे अभी बात कर रहा आपके माटी के जांच, मतलब आपके जो कृषि विस्तार अधिकारी है उनकर माध्यम से किसान भाईमान अपन माटी ला सकेल के दिही कहके, का एकर बार कोनो प्रकार के जैसे कि हमन बहरानार के माटी लावतन या भाटा भुइया के माटी लावतन, तो एमा कुछ बी1 नकल खसरा कुछ कागज पत्र दे लाते का?
1: नकल खसरा वगैरह नहीं लागे साहब भैया, एक लिए का करे लगते कि वो पूरा जे है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है जाही तो खसरा नंबर, किसान के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब लोड करे रखे और आधार पर पूरा सूची बना के हम लोग देखे ओकरे आधार पर
0: अच्छा
1: फिर
0: अच्छा
1: हम रिपोर्ट बनाते।
0: अच्छा अभी 2 दिन पहले पानी गिरी हवा, तो अकरा जो

0: जैसे अभी बात कर रहा आपके माटी के जांच, मतलब आपके जो कृषि विस्तार अधिकारी है उनकर माध्यम से किसान भाईमान अपन माटी ला सकेल के दिखी के का एकर बार कोनो प्रकार के जैसे कि हमन भरनार के माटी लावतन या भाटा भुइया के माटी लावतन तो एमा कुछ बी वन नकल खसरा कुछ कागज पत्र देह लगते का?
1: नकल खसरा वगैरह नहीं लगे साहब ओकर भैया, एकर लिए का करे लगते कि वो पूरा जे हर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है जाही तो ओकर खसरा नंबर, किसान के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब नोट करे रखे और ओकरे आधार पर ओकर पूरा सूची बना के हम अलग देखे ओकरे आधार पर
0: अच्छा
1: फिर हम ओकर रिपोर्ट बनाते।
0: अच्छा अभी 2 दिन पहले पानी गिरी हवा तो अकरस जोताई काबर करना चाहिए और कौन बेरा करना चाहिए एला बताता आप?
1: अकरस जोताई बहुत बढ़िया बता था। अकरस जोताई करे से सबसे बढ़िया फायदा ये रखे कि जैसे घाम पानी गिरी से अब 1-2 दिन के बाद नागर चले के लिए ऊन आ जाए तेकर ले, यदि एकर बाद में यदि हम अकरस जोताई करत हन तो अकरस जोताई करे के एक तो जो जैसे ही पानी पड़ते घास खरपतवार बन कचरा जेला कथन और जाग जाते तो अभी
0: अच्छा
1: दो
0: अच्छा
1: से दो तो हर उमर जही तो बन कचरा हर फसल के समय फिर दोबारा नहीं जागी। और दूसरा चीज है कि भले ही फसल नहीं लगे है लेकिन ओकर जो कीड़ा रोग है तेवन छोटे छोटे कीड़ा के रूप में, अंडा के रूप में, लार्वा के रूप में भी छिपे रखे तो यदि वो हम छोड़ देवो तो वो बाहर निकल जाही तो चिड़ई चुड़गुन खा दही या घाम मर जही तो एकर से हमला कीड़ा रोग के भी माने सुरक्षा हो जाते और साथ साथ बंद कचरा हर भी नहीं हो। और जमीन में जबकि पोला रही तो ओकरे हिसाब से हमला जड़ के गहराई भी ज्यादा गहरा जबकि पोल में भी ओके गहरा तक जड़ी ही चाहिए और जड़ी बढ़ी तो पौधा बढ़ी तो ओकर हमर फसल भी बढ़ी भैया।
0: अच्छा, एक खातिर हमारा अकरस जोताई करना बहुत ही
1: बहुत
0: आवश्यकता होती
1: जरूरी,
0: है जब।
1: यदि मौका मिले तो जरूर कराना चाहिए जिसको ज्यादा बार अकरस जोताई करें बढ़िया फायदा के लिए किसान मन के।
0: अच्छा मन तो थे बौद्ध जी कि आप मन करा और माटी जांच के बारे में थोड़ा कन गुठियाए के, लेकिन बेरा होते कार्यक्रम ले विदा ले के जात जात आप हमारे किसान भाई मल्ला माटी जांच के अंतर्गत का सलाह देना चाहता इला बताता आप?
1: भैया मन ला यही सलाह देवो कि भाई जिस तरह से अपन स्वास्थ्य के लिए बीच बीच में जांच कराता तभी स्वस्थ रहता उसने प्रकार के हमारे माटी के भी जांच जरूरी है और ओकरे हिसाब से संतुलित मात्रा में जैविक खाद ला डाले के ज्यादा प्रयास करना है भैया, तभी हमारे फसल भी बढ़िया रही, मिट्टी भी बढ़िया रही और भविष्य हमारे सुरक्षित रही।
0: बहुत अच्छा जानकारी बताया है संगवारी हो। एमरिन हवाए श्री विजय सिंह बौद्ध, कृषि विकास अधिकारी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जांगी चापल है। बहुत अच्छा लगी चापन की हमारे किसान भाई मल्ला बताया कि माटी जांच कराए के लाभ का हवाए। अवैया बेर में फिर अपन कर नवा विषय में चर्चा करबो। इतका बड़ी जानकारी बताया एक बार अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
1: आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम, जय जोहर।
2: तो किसान भाई हो, आप मन सुना ना भाई कि कतेक बढ़िया बात बताइन है कि माटी जांच काहे जरूरी है। और हमार सवाल घलो रही सब है तो सवाल के जवाब आप मन जरूर ये भेंट वार्ता के भीतर पागे हो हा कि माटी जांच कराए ले काय काय लाभ होते और काहे कराना जरूरी है। एकर से पता चलते कि हमार जिन खेत के माटी में कतका उर्वरा है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन मात्रा में है, हमला खाद के निर्धारण जिन माटी जांच केंद्र है वहां से प्राप्त होते, जेखर माध्यम ले हमन अपन जिन रासायनिक खाद है ओकर प्रयोग ला देख के ताक के समझ के सोच के करथन, जेखर ले फसल बढ़िया पैदावार देते। नहीं तो आंखी मूंद के देहे मा ज्यादा देहे मा है ना नुकसान, पैसा के समय के अलग होते, फसल अलग खराब होते। तो ये फायदा है, माटी जांच कराना बहुत जरूरी है। तो बढ़िया बताते हैं हमला श्री विजय सिंह बौद्ध जी, ये मन रहिन है कृषि विकास अधिकारी अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के। इनका से गोट बात चलाते हैं हमार पंचू भैया। आप सुना सुन के लाभ जरूर ले हो। अब आप आवाज सुन लेते ये प्रोमो।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ

0: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
1: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: तो किसान भाई हो, देखो जब किसानी मान बढ़िया मेहनत करके जब शाम के समय बढ़िया काजर पाउडर बिंदिया है ना सिंदूर लगा के नवा साड़ी पहनते तो कतेक मन भावन रखते और वही जेन देख के मन मा एक गीत बन जाते और गीत बनते तो रूप गजब मोला मोह डारिच। तो ये जिन सौंदर्य है ना और ओखर बखान गीत के माध्यम ले स्वर हवाय भीखम धर्माकर के तो आवाज सुन लेथन ये बहुत जुन्नतहा गीत उखर स्वर्मा।

तो वाकई में किसान भाई हो, देखो जब किसानीन मन सज के धज के और पूरा 16 श्रृंगार जब करते तो नायक के मन में ये भाव जागते और जब बन जाते वाला केतन हम श्रृंगार गीत। हमार जीवन में गीत जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण रखते जेखर माध्यम ले हमले एक ऊर्जा ताकत और एक भाव लब जब व्यक्त करी हो तो एक माया एक प्रेम एक प्रीत जागृत होते। तो प्रेमी और प्रेमिका या किसान किसानी के बीच मा ये जिन श्रृंगार भाव है बड़ा महत्व रखते। ये गीत लसवर धेरे ने भी कम धर्माकर। अब आप मन संगवारी हो काय काय बूता करना है का काम उधर तो चेत करे बरे किसान भाई हो तो सबले पहले तो हमला अपन जैन आने वाला जिन खेती है उत्ती पर ध्यान देना है। खेती किसानी पर सलाह तो यही कहबो कि अभी गर्मी के मौसम है किसान भाई हो, फसल और पशुधन के सही देखभाल आप मन करना है और घाम है तो खले आप मन अपन और अपन जानवर के घलो बचाव करना है। पानी के भी प्रबंध करना है, पानी की कई जगह कल्लाई मात गए है तो पानी की खपत ज्यादा नहीं करना है। हमला सोचे पानी ले बहाना नहीं है, है ना। तो ये और एक ठन बात कि ये महीना में आपन अकरस जोताई गहरा जोताई के काम जरूर करो जेकर से कीड़ा मकोड़ा जेन अंडा रही थे वो मिट्टी जब पलटते और गर्म होते तो खले वो मन नष्ट हो जाते कह जाए। धान के बीज के तैयारी भी आपन करो काका धान बोना है कौन कौन खेत में कह जाए और बीज उपचार बर ट्राइकोडर्मा उखर अनुशंसित जेन दवाई के प्रयोग जरूर आप मन करो। दलहन और तिलहन फसल अरहर मूंग उड़द जैसन दलहन फसल की बीज भी समय ले तैयार रखो। ये फसल में जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए और किसान ला अतिरिक्त आमदनी देते किसान भाई हो। साग भाजी सब्जी की खेती पर हम यही सलाह देबो कि आपन गर्मी के समय में भिंडी लौकी करेला कद्दू जैसन सब्जी फसल के सिंचाई समय में करो संगवारी हो। पशुधन के देखभाल बहुत जरूरी है, पशु मल्ला साफ और ठंडा पानी जरूर देवा, दुपहिया दूध देवैया

0: जेन पशु मन बर छाव रखो हरा चारा के भी संतुलित आहार देव और ये प्रकार ले अपन पशु ला बीमारी ले भी दूर रखा खुरहा चपका के जेन टीकाकरण होते ओला जरूर लगवाओ। तो ये तो रही से संगवारी हो किसान मन बर जरूरी सलाह और अब यही सलाह के संग कार्यक्रम ले विदा लेहे के बेरा हो गए है। आगू कार्यक्रम में आप मन से फेर भेंट मुलाकात करबो अब अतके कहबो जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम। किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रही सब है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: श्रोताओं भी अब सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत की आज किस महकती महफिल में हम आपको सुनवा रहे हैं हरी हरण के गाए हुए कुछ बेशकीमती गैर फिल्मी नगमे। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला मोती हरी हरण की आवाज़ में।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शेखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद चलिए लौटते हैं एक बार फिर हरी हरण की आवाज के साथ सुगम संगीत में। जी हाँ, सुगम संगीत की आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं हरी हरण के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी नगमे। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: करेंगे आप भी।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के सफर में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए हुए कुछ बेशकीमती तराने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा।

श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के सफ़र में हमने आपको सुनवाया हरिहरन के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत। और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही कार्यक्रम से अब दीजिए विदा।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम। श्रोताओं, मकबूर शायर नासिर काज़मी का लिखा एक शेर है कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानुस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, बस एक मोती सी छब दिखाकर बस एक मीठी सी धुन सुनाकर सितारा शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। जी हाँ मित्रों, ये भी कितनी अजीब सी बात है ना कि कुछ लोग इस दुनिया से कूच कर जाने के बावजूद भी हरदम हमारे आसपास महकते रहते हैं। कुछ आवाज़ें हमारे प्लेलिस्ट में बरोज़ बजती रहती हैं, कुछ बेशकीमती गीत हमारे लूप में चलते रहते हैं। आज हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी ही मखमली थर्राहट भरी आवाज़ के विषय में हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने 40 के दशक में गज़ल गायकी को अपने सुरीले अंदाज में कुछ यूं पेश किया कि उन्हें गज़लों की दुनिया का किंग पुकारा जाने लगा।

श्रोताओं, ये मखमली सी आवाज़ थी तलत महमूद की। भारतीय हिंदी फिल्मी जगत में तलत महमूद साहब को वो दर्जा हासिल हुआ है जिससे ये तो सिद्ध होता ही है कि तलत महमूद न केवल एक दिग्गज पार्श्व गायक हुए बल्कि हर दिल अजीज एक ऐसे फनकार भी हुए जिनकी आवाज़ रूह में उतरती गई और सालों तलक अपने सुनने वालों को खुद से जोड़े रखने में कामयाब भी रही। सूत्र बतलाते हैं कि तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ। संगीत के प्रति गहरी रुचि उनके बचपन के दिनों से ही परवान चढ़ती रही। घर वालों ने नन्हे तलत को बहुत समझाया कि मौसिकी छोड़ दें और वे पढ़ाई में मन लगाएं, मगर तलत कहाँ रुकने वाले थे। परिवार के कड़े विरोध के बावजूद तलत महमूद ने मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक से अपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की और पूरी तरह से एक दिन रच बस गए सुरों की दुनिया में।

श्रोताओं, तलत महमूद ने अपने करियर की शुरुआत 1949 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो से की और देखते ही देखते तलत महमूद लखनऊ की आन बान और शान बन गए। लखनऊ की आवाम ने तलत महमूद की रूहानी आवाज़ को हाथों हाथ लिया और इस तरह तलत साहब अपने ही शहर में मकबूल होते गए। 1941 में तलत महमूद ने HMV के साथ मिलकर अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया और यहीं से एक नई शुरुआत उनका इंतज़ार करने लगी।

दोस्तों, तलत महमूद ने अभिनय की दुनिया में भी अपना परचम खूब लहराया। उनकी जोड़ी को आराम और वारिस जैसी फिल्मों में सुरैया के साथ बेहद पसंद किया गया। फिल्मी अभिनेता के रूप में उन्होंने तकरीबन 13 से 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन गायक के रूप में उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी सफलता अभिनय की दुनिया में नहीं मिली। इसलिए उन्होंने आगे

श्रोताओं, तलत महमूद ने 1950 और 60 के दशक में कई यादगार गज़लें और फिल्मी तरानों को गाया जो आज भी बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं। आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। तलत महमूद ने अपने कुछ करियर में अभूतपूर्व बांग्ला गीतों को भी गाया, लेकिन कोलकाता में वे तपन कुमार के नाम से रिकॉर्ड करते रहे गीत, और कुछ समय बाद वे कोलकाता से मुंबई आ गए। यहाँ 1950 में आरजू फिल्म के गीत ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, इसी गीत से इन्हें शोहरत मिली और ये कामयाबी के पायदान चढ़ते गए।

साथियों, तलत महमूद साहब की आवाज़ में एक ऐसा सम्मोहन मौजूद था जो अपने सुनने वालों को अक्सर एक रूहानी दुनिया की सैर कराता रहा। गज़ल उनकी आवाज़ में ढलकर सहज बनते गए और गीतकारों को ये महसूस होने लगा कि नज़्में और गज़लें भी हिंदी फिल्मों के लिए लिखी जा सकती हैं।

साथियों, तलत महमूद साहब को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वे एक शांत स्वभाव के पक्के गृहस्थ व्यक्ति हुए जिन्होंने लतिका मलिक से विवाह किया और इनकी दो संतान हुई। तलत महमूद ने अपने जीवन काल में तकरीबन 800 से भी अधिक गीत गाए। तलत साहब पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने विदेश में जाकर कॉन्सर्ट भी किया। 1956 का वो सुनहरा दौर जब तलत महमूद की आवाज सात समंदर पार गूंजी और वहां की वादियों ने अपनी एक अलग पहचान के रूप में तलत साहब को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया।

साथियों, आज तलत महमूद की याद का दिन है। आज यानी 9 मई को तलत साहब ने दुनिया को अलविदा कहा था, मगर उनके गाए इतने अनमोल स्मृति गीत हमारे आसपास बिखरे हुए हैं कि अगर हम उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो शायद सूची कम पड़ जाएगी। हम इन गीतों के साए में पलते रहें, बसते रहें, महकते रहें, इसी दुआ के साथ आइए उनकी स्मृति को करते हैं नमन और सुनते हैं एक और बेशकीमती तराना उन्हीं की आवाज़ में।

आखिर ये कैसे मुमकिन है तलत साहब कि हम आपके गीतों को सुने और आंसू ना बहाएं। आंसू बहते रहे लेकिन दिल का एक कोना

मुस्कुराता रहा। हम तो यही दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ की मार्फत, अपने आवाज़ के माध्यम से यूं ही ज़िंदा रहें, महकते रहें, हम आपके गीत सुनते रहें। इसी दुआ के साथ दीजिए विदा इस कार्यक्रम से आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह

0: की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

0: लेकर रात्रि के 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11 बजे समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की ओर। तो चलिए फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।
1: भूल भुलैया फिल्म का गीत सुनिए नीरज श्रीधर की आवाज में, समीर के बोल, प्रीतम का संगीत।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए

बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

0: फिर कहीं और चल।
1: संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

0: वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में, आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर। एक छलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते। देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।
1: रुख से

मोहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जवां होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ, ये लहराते गेसू, ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं।

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
0: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
0: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों

0: मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu TVK, Chief C. Joseph Vijay today